संडे जस्टिल में आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. बैक टू बैक सॉन्ग्स काफ़ी लेकर आया हूँ, एक एक करके आपको मैं सुनाऊंगा. अमेजिंग लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स भी हमारे पास है जो आपके लिए हम शामिल करेंगे. अभी तो प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, आगे आगे बहुत कुछ आपके लिए होगा. एक के बाद एक आपके लिए गानों के साथ में इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएंगे. 2 to 4 PM याद रहे टॉक्स एंड ट्यून्स भी पेश करेंगे. रिलेटेबल सॉन्ग्स जिसमें कुछ कहानी छुपी होती है, कुछ मेमोरीज छुपे होते हैं, वो भी लेकर आएंगे आपके लिए. आपको बस हमारा साथ देना है. इंटरेस्टिंग सामाजिक सूचनाएं भी है, इवेंट्स होने को है, और पॉडकास्ट्स पर भी बातें करेंगे आपके साथ होकर. साथ देते रहे.

0: biggest hits.
1: Put your hectic on day.
0: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
7: Showerdome.co.nz.
8: Oaklin, taiyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan, Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
9: Thank you.
10: It's all I can think about.
9: What does it sound like?
10: Yeah, I'd rather not.
9: Go on, why don't you have a crack?
10: Okay, got a plumbing problem.
9: Oh, I need a bit more than that.
10: They've got your back.
9: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
10: Oh, okay.
11: There's no better plumber to give it a crack.
9: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
10: No, I want a plumber.
12: Advertise with
13: MediaWorks.
12: New Zealand listens to us.
14: Woody, no worries.
15: South Auckland's buses just became a lot better.
14: Oh my, oh my.
15: With better bus routes, more frequent buses, and more.
14: Grey South Road, now even greater.
15: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
16: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
0: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
7: Kabhi bhi, kahi bhi.
17: संडे जस्टिल में आपका स्वागत है। 7th जून आज है। अगर आपका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करना चाहेंगे तमाम हमारे प्यारे लिसनर्स को जो अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम श्योर आज घर पर सेलिब्रेशन होगा क्योंकि वीकेंड है तो मौका भी है, दस्तूर है, अपॉर्चुनिटी है, लोग है और सबकी छुट्टी भी है। आप घर पर अगर है तो आपको याद करते हैं और हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से। अगर आप काम पर हैं आपको भी एक बहुत ही जल्दी एक शाउट आउट देने वाला हूँ। जितने भी लोग आज हमारी तरह संडे को काम कर रहे हैं, सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करेंगे फिलहाल याद कर ही लेते हैं हमारे जितने भी वर्कर्स को जो अभी शिफ्ट कर रहे हैं आप भी काम पर है फैक्ट्री वर्कर्स है या फिर आप ट्रक ड्राइवर है ऊबर ड्राइवर है टैक्सी ड्राइवर है आपका काम चलते रहता है दिन भर और रात को भी आप हमारा साथ देते हैं तो आई विल मेक अ पॉइंट कि मैं भी आपको याद करूं आपको और साथ में अन्य वर्कर्स को हम याद करते हैं बिग शाउट आउट टू यू इन द नेक्स्ट सॉन्ग सुनते रहो हम मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: to 10 a.m.
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: Just chill.
10: एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स तो हम पेश करेंगे, कुछ सवाल भी लेकर आएंगे, एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमें इन चीज़ों का जवाब भी भेज सकते हैं 5599 पर, और मुझे जानना है कि क्या जवाब आपका हो सकता है। कुछ ऐसे ही सवाल मैंने सोच के रखा है, बहुत ही जल्दी इनफैक्ट अगले घंटे पर वो लेकर आएंगे आपके लिए। जस्ट चिल प्रोग्राम जारी है, संडे है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। 7th June है, देखते देखते फर्स्ट वीक ऑफ जून भी निकल चुका है, और ऐसे ही मिड ऑफ द ईयर के बाद हम प्रोग्रेस करते रहेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जहाँ पर बहुत सारी फेस्टिविटीज है, बहुत अच्छे दिन भी है जहाँ पर आप एंजॉय करेंगे लॉन्गर डेज आगे चलकर। लेकिन फिलहाल विंटर से निपट जाते हैं, विंटर से संबंधित जानकारी भी हम लेकर आएंगे, टिप्स भी आपको देंगे आगे चलकर।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.

0: Just chill.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: You're listening to Just Chill on Sunday. आज संडे आफ्टरनून शो लेकर मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. It's past one now और स्वागत है आपका. Good afternoon everyone. Welcome to the show. आपके लिए एक से बढ़कर एक गाने हम लेकर आ रहे हैं. इस घंटे पर एक सवाल भी आपसे पूछेंगे और आपको जवाब हमारे पास 5599 पर भेजना है. कुछ और प्यारे गाने सुनाते हैं आपको. शाउट आउट भी देंगे हमारे तमाम लिसनर्स को. ऑनलाइन लिसनर्स को भी हम याद करेंगे. रोवल लिसनर्स को भी बहुत ही जल्दी याद करेंगे. आपको बस हमें सुनते रहना है. हम पॉडकास्ट पर भी बातें होगी. सामाजिक सूचनाएं भी आपको बताने को है जो इसी शिफ्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा. बस आपको हमारा साथ देना है क्योंकि म्यूज़िक के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आप तक हम पहुँचाएंगे.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Just Chill on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और इस बार बॉलीवुड कैरेक्टर चैलेंज में मैं एक और सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए. यू आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, हु इज ड्राइविंग? ये चार कैरेक्टर्स का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ. रेंचो, सिंघम, बनी या गीत. आप हमें बताएं कि ये जो कैरेक्टर्स अगर चार है, इसमें से कौन ड्राइव करेगा अगर आप रोड ट्रिप पर जा रहे हैं? हु गेट्स यू देयर सेफली? रेंचो, सिंघम, बनी या गीत? 5599 पर आप हमारे पास जवाब भेज सकते हैं कि आपका वोट के हिसाब से या आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप किन को ड्राइवर बनाएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: Mary didn't think she needed a DVS system. I've got a heat pump. That should do. But it didn't do it, did it, Mary?
2: No. My windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Mary got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. Plus, enjoy free delivery until Monday. On now. Only at Freedom.
8: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
9: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
10: Non-stop Bollywood.
11: Hum.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Just chill.
13: संडे जस्ट चिल जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ सोलो ट्रेवल टिप्स या हैक्स जुगाड़ स्टाइल ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस होता है सोलो ट्रेवल। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो फिर आपको अकेले ही ट्रेवल करना मज़ा आएगा। आई एम अ सोलो ट्रेवलर एंड आई एन्जॉय इट थरली। अगर आप स्मार्टली प्लान करते हैं और फ्लेक्सिबल रहते हैं, पैनिक नहीं करते हैं, तो फिर ये मोस्ट एन्जॉयबल ट्रिप आपके लिए बन सकता है। आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा कि कोई अकेला निकल जाता है घूमने के लिए और बहुत कुछ सीखता है उस दौरान। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को सिखाया है। तो आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, तो कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास भी कोई टिप हो आप हमें ज़रूर बताएं, लेकिन कुछ ही देर में ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्रिश के साथ हैं, सुनते रहो संडे जस्ट चिल।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. Ek ke baad ek aapke saare favorite songs mein pesh karta rahunga. Sabse pehla tip ye hai ki aap apne location ko share kare bahut hi smartly. Kyunki aap agar live location use karte hain with a trusted friend ya family member, aap check-in times bhi kar sakte hain instead of constant messaging. So aap kafi independent reh sakte hain, lekin safe kyunki aapke ghar walon ko, aapke trusted family ya friend ko pata hai ki aap kahan par hai. It also gives you a sense of security ki aap आपके अलावा किसी और को पता है कि आप कहाँ हैं. हालांकि मैंने ये कभी अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप नर्वस हो, पहले ट्रिप पर जा रहे हो, तो ये लाइव लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा रहे कि किसी और को पता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं. अबाउट योर वेयर अबाउट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them. Dash!
2: Savior of the lunchbox.
1: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash. Dash!
3: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5k savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond, and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.

0: Just chill.
1: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Just chill aapke liye jari hai. और छः तक जारी रहेगा. सोलो ट्रेवल टिप्स जुगाड़ स्टाइल में आपको बताने जा रहा हूँ. पैक लाइट, थिंक स्मार्ट, ये बहुत ही बड़ी टिप है. इनफैक्ट मैं ये टिप को डेडिकेटेडली या रिलीजियसली फॉलो करता हूँ. लाइट ट्रेवल इज़ द की. आप सूट केसेस लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत चैलेंजेस भी होते हैं, स्ट्रगल्स भी होते हैं सोलो ट्रेवल में. आप अकेले हो, आप यू हैव टू बी डिसाइसिव, आपको हर एक डिसीजन खुद लेना होगा. तो कैरी ओनली एसेंशियल्स और चूज़ क्लोथ्स जो मिक्सर मैच हो सकता है इजीली. लाइटर बैग आप ले ताकि ईजियर मूवमेंट हो और लेस स्ट्रेस होता है एयरपोर्ट्स पर और ट्रांसपोर्ट हब्स पर, क्योंकि बहुत सारे इंटरचेंजेस होते हैं. आप यहाँ से वहाँ पर जा रहे हो, लाइट बैग हो तो ज़रूरी होता है. स्ट्रेप हो बैग्स जो आप अपने कंधों पर टांग सकते हैं, व्हील नीचे हो वो भी अच्छा रहेगा. छोटे छोटे बैग्स भी ऐसे आते हैं. और एसेंशियल्स ही कैरी करें, मिक्स एंड मैच करें कपड़ों को, क्योंकि आप आसानी से उनको धोकर पहन सकते हैं. बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रैवल करें. ये बहुत ही बड़ा ट्रैवल टिप आपको शायद मिला होगा या आपने खुद सीखा होगा. इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई एडॉप्ट. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और भी बातें अगले घंटे पर आपके साथ होगी.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back everyone. It is past two news and sports updates ke baad mein abhi ek bar phir aapka swagat hai. Jari hai aapke liye Sunday Just Chill program aur main Krish aapka saath de raha hu. शाम 6 बजे तक हमारा साथ रहेगा और ऐसे ही आपको हमारा साथ देना है. देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए Sunday Just Chill Talk and Tunes.
2: Talks and Tunes live in New Zealand on Saturday breakfast.
1: टॉक एंड ट्यून्स में आपका स्वागत है. संडे जस्टिल में ये एक सेगमेंट होता है जहाँ पर कुछ ऐसे गाने हम लेकर आते हैं जिनको रिलेटेबल कहा जा सकता है, जो हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उस गाने से जुड़ा होता है, चाहे वो यहाँ पर लाइफ जैसे हमने बिताया है कुछ गानों के सहारे या फिर उन गानों से कुछ यादें जुड़ी है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी. फिलहाल तो कुछ गाने आपको सुनाते हैं. अगले ब्रेक में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे गानों के बारे में जो प्ले मैं आपके लिए करूँगा और उसके बारे में एक स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और हमारा साथ रहेगा टिल 6 PM संडे जस्ट चिल प्रोग्राम में.

टोकन ट्यून्स आप सुन रहे हैं और आज संडे जस्टिल प्रोग्राम में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। ये जो अगला गाना मैंने आपके लिए चुना है, ये गाना आपने शायद याद होगा कि बहुत टाइम पहले एक गाना आया था, अम्मा देख तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए। ये जो गाना था, इसको रीमेक करके अभी लाया गया है गुरिंदर सीगल और साथ में सकृति कक्कर ने इस गाने को गाया है। ये गाना मैंने चुना है क्योंकि इस गाने को जब जो पहला वाला वर्जन रिलीज़ हुआ था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, हर कोई गाता था और आई थिंक चाइल्डहुड मेमोरीज उस गाने से काफ़ी जुड़ी है क्योंकि हम गुनगुनाते थे, उस पर एक्टिंग होता था और अगर किसी को कुछ कमेंट भी पास करना है, रिमार्क पास करना है तो ये गाना, इस गाने के लाइन को बोल कर सुनाना, तो आई थिंक इट टेक्स मी बैक इन टाइम। तो मैं ये जो दूसरा वर्जन है, अभी का वर्जन मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, आप ये सुनो, लेकिन जो पुराना वर्जन है वो और भी मज़ेदार है। आप एंजॉय करते रहो जस्ट चिल, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। संडे टॉक एंड ट्यून्स आपके लिए जारी है।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Talks and tunes. Life in New Zealand on Saturday Breakfast. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to your number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai, solo travel hacks bhi aapko main bata raha hoon. Kaafi ye smart tip ye bhi hai ki aap digital aur physical copies rakhe apne travel documents ka, passport, ID, tickets, booking, ye sare email mein hone chahiye, aapke phone par save hone chahiye. Printed set aap tab le jab aapke paas, matlab aap separate bag mein carry kar payenge. क्योंकि इनको गुम करना बहुत ज़रूरी आसान हो जाता है, आप कन्फ्यूजन में कहीं पर रख सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ या डिजिटल कॉपीज़ रखना बहुत ही ज़रूरी है. अराइवल फर्स्ट आवर प्लान, इस पर भी जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. संडे जस्टियल जारी है, क्रिश के साथ है. कुछ और भी इंटरेस्टिंग सामाजिक सूचनाएं हैं, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप इसमें भाग ले सकते हैं. फ्री इवेंट है और कुछ रिलीजियस इवेंट्स आने को है जिसमें सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. ऐसे भी इवेंट्स के बारे में जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा. संडे जस्टियल सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ देर रहा.

यू लिस्निंग टू नंबर वन, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे। कुछ और ऐसे गाने हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है, ये जो गाना है आशा भोसले ने गाया है, ये भी बहुत ही मशहूर हुआ था। और आई रिमेम्बर घर पर जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जब डांस हम लोग करते थे एज अ ग्रुप, तो ये भी गाना बजता था और इस पर जो भी एक्शन आता है जिस किसी को भी यू नो ये गाना है ही ऐसा, आशा भोसले ने गाया है, बहुत ही प्यारा गाना है। आप ये सुने कुछ ऐसे गाने जो यादों की दुनिया में आपको लेकर चले जाते हैं, बचपन की दिनों को याद दिलाते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स जो आई एम श्योर मैंने अपने कजन्स को परफॉर्म करते हुए देखा है, तो अब वो भी आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, खुश का साथ है।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। Available at all leading stores.
2: At Bunnings, we've got a wide range of rugs to make your home cozier this winter. From plush rugs to hard-wearing styles for busy areas and fun designs to brighten the kids' rooms. We make cozy easy this winter. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
3: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
4: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari good brands nahi hai.
5: Life in New Zealand on Saturday Breakfast.
7: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स फर्स्ट अराइवल फर्स्ट आवर प्लेन बिफोर लैंडिंग। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कैसे आप अकोमोडेशन तक जाएंगे, इसलिए ट्रांसपोर्ट अगर बुक करना है या पब्लिक ऑप्शन अवेलेबल है एडवांस में ही जान ले टू अवॉइड कन्फ्यूजन। जैसे मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ अलग अलग जगहों पर, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल काम हो सकता है जब आपको पता नहीं है कि एयरपोर्ट के बाद आप कैसे अपने अकोमोडेशन तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा ऑफ दैट कंट्री। अगर ये यहाँ पर अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आपको शायद आगे चलकर काफ़ी डर पैदा हो जाएगा दिमाग में, आपका एक्सपीरियंस ही स्टार्ट ही खराब हो जाएगा और शायद आप थोड़ा पैनिक कर जाओगे। तो इसलिए ये प्लानिंग होना ज़रूरी है कि किस तरह से आप अपने अकोमोडेशन तक पहुँचोगे। जैसे आई रिमेंबर जब मैं डेलस गया था टेक्सेस में, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आई वेंट टू द सिटी। सभी जगहों पर क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहे थे, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जानना ज़रूरी कि कहाँ से आप वो लेंगे, कहाँ से आप जा सकते हैं, कैसे आप टिकट्स लेंगे, प्राइस कितना है, कहाँ किस स्टेशन पर उतरना है, कैसे आप ट्रैक करेंगे स्टेशन्स को, ये सभी कुछ प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। कृष का साथ है

पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
5: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece, built to keep you warm when the temperature drops. Plus global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.

0: Life in New Zealand on Saturday Breakfast. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: संडे जस्ट चिल में आपका स्वागत है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और ऐसे प्यारे प्यारे गाने इस घंटे पर भी लेकर आएंगे आपके लिए। आपके लिए जारी है टॉक एंड ट्यून्स और आज है संडे जस्ट चिल प्रोग्राम आपके लिए। आज 7 जून है, आपको याद करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मैं क्रिश आपके साथ दूंगा टिल 6 PM।

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, एक एक करके आपके सारे favorite songs हम पेश करते रहेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है और प्यारी बातें और interesting खबरें और amazing songs भी पेश करेंगे. Caller Talk and Tunes के बारे में बात करें तो जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल का ये गाना आई थिंक बहुत ही प्यारा है, क्योंकि हबीबी के नैन ये गाना पर काफ़ी मीम्स बने थे, मजाक भी बना था और इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने रील्स और वीडियोज़ भी बनाया था. ये गाना हर किसी को भाता है, रोमांटिक भी है और इस गाने के बोल भी थोड़ा बहुत आपको नॉट फनी, लेकिन आप ऐसा लगता है कि आप इस पर थोड़ा बहुत जोक्स भी बना सकते हैं, जैसे हबीबी कम टू दुबई, ऐसे कुछ गाने बने, मीम्स बने थे इस गाने को लेकर. तो ये इसलिए ये गाना काफ़ी यादगार बन चुका है और आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं इन जस्ट चिल प्रोग्राम, जो आपके लिए टोकन ट्यून्स अभी फ़िलहाल सेगमेंट जारी है.

0: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: Non-stop Bollywood.
5: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
4: हम playing Bollywood's biggest hits.
6: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. क्रिश के साथ है, जस्ट चिल प्रोग्राम आप सुनते रहे और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे. फिलहाल अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल है, तो लोकल सिम या ई सिम लेना आप ना भूलें, क्योंकि इससे आप जैसे ही आप अराइव होते हैं आप इंटरनेट डाल सकते हैं लोकल ई सिम के ज़रिए या सिम के ज़रिए, और इससे मैप्स, बुकिंग्स और सेफ्टी के बारे में और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को लेकर आप काफ़ी आप ऑन टॉप ऑफ इट रहेंगे, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है. इंटरनेट नहीं होता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, जहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा बगैर इंटरनेट के. इसलिए ई सिम और इंटरनेशनल पैकेजेस भी होते हैं काफ़ी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: tunes on Saturday Breakfast.
1: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Sunday Just Chill program jari hai aur shaam 6 tak chalta rahega. Aur bhi tips aapko dena chahunga. Agar aap social accommodations mein rehte hain, ye bhi aapke liye kaafi acha rahega. Hostels aur shared stays kaafi great hota hai solo traveling ke liye, kyunki aap kaafi logon se easily milte hain aur aapke paas khud ka space bhi hota hai. क्योंकि जो सोशल अकोमोडेशन होते हैं हॉस्टल्स में, एक अलग कमरा भी हो सकता है, लेकिन जैसे आप नीचे आते हैं शेयर्ड किचन होता है, शेयर्ड लाउंजेस होते हैं, कॉमन स्पेसेस होते हैं जहां पर आप लोगों से मिल सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं. क्रिश का साथ है और भी बातें आपके साथ बहुत ही जल्दी.

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
4: कर रहा हूँ. बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
3: मेरे को समझ में नहीं. एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: Right now at Super Cheap Auto, get 25% off store-wide. Save on Penrite, NGK, Bowden Zone and more. Hurry in store or online now. Sale ends tonight. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.
11: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
12: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.

0: Life in New Zealand on Saturday Breakfast.
1: You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद भागवत कथा सुनने का मौका है. पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा यहाँ पर रहेंगे. ये जो इवेंट है श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. 5 to 11 June के बीच ये होगा और महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर आप जा सकते हैं. 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ओकलैंड आपको पहुंच जाना है और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है.

0: सब कुछ आपका ही है.
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
2: संडे जस्टियल जारी है और मैं क्रिश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. स्वागत है आपका. वेलकम टू द शो. 7th June है और शाम 6 तक हमारा साथ रहेगा. कुछ ही देर तक 2 घंटे के लिए और मैं आपका साथ दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी. इस घंटे पर भी कुछ सोलो ट्रेवलिंग हैक्स आपके साथ शेयर करेंगे. और हमारा जो सवाल रहा है, अगर आप एक रोड ट्रिप पर जाते हैं, हु इज़ ड्राइविंग, ये दोहराएंगे आपके लिए. कैरेक्टर्स का नाम एक बार फिर आपको बताएंगे. एक बार फिर आपका स्वागत है.

0: Mr. and Mrs. Khiladi.
1: You're listening to Krish.
2: Let's go!
3: You're listening to Just Chill और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. संडे है आज, अमेजिंग डे है और रिलैक्सिंग का दिन है. अगर आप एक रोड ट्रिप पर जाते हैं, हाइपोथेटिकली समझो कि आप रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, ये बॉलीवुड कैरेक्टर चैलेंज की बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो इनमें से कौन ड्राइव करेगा आपके लिए? रांचो, सिंघम, बनी या गीत? ये चार कैरेक्टर्स में से कौन से कैरेक्टर को आप नॉमिनेट करेंगे जो आपको सेफली आपके मंजिल तक पहुँचा सकता है? 5599 पर आप जवाब भेजें.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
2: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods.
3: Non-stop Bollywood.
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
3: हम playing Bollywood's biggest hits. You're listening to Krish.
5: Let's go.
6: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है. काफी लोगों का जवाब आ रहा है कि रेंचो को तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये गलती कर देगा, कंफ्यूज हो जाएगा. सिंघम को भी नहीं क्योंकि ये बहुत तेजी से चलाएगा. कुछ लोग कह रहे हैं कि गीत विल बी वेरी सेंसिबल ड्राइवर क्योंकि ये काफ़ी सुलझी हुई है, सहमी हुई है, नॉट सहमी हुई बट सुलझी हुई है, तो शायद ये अच्छी ड्राइवर हो सकती है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो जस्ट चिल और शाम 6 तक हमारा साथ रहेगा.

लो शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट गाने हम पेश करते रहेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है। कुछ ही देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे हम पॉडकास्ट पर जानकारी, जो आप सुन पाएंगे हमारे साथियों द्वारा जो पॉडकास्ट तैयार किया जा रहा है, जिनमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग जानकारी है और ख़बरें हैं, जिसमें बहुत सारी कॉन्टेंट है जो आपके लिए सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप इसके बारे में बातें करेंगे बहुत ही जल्दी।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है। Now showing in cinemas.
2: I am going to expose this fraud.
1: Distribution partner Forum Films. Rated M.
3: Wow.
4: Playing

0: सब कुछ आपका ही है।
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम लेकर आते रहते हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना है कि रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाऊ में आयोजित किया गया है 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ। ये 13 जून को होने जा रहा है। सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है और प्रोग्राम की शुरुआत होगी सुबह 7 से लेकर 8 बजे। स्थापना पूजा होगी, फिर 8 AM to 6:30 PM चालीसा पाठ होगा विभिन्न मंडलियों द्वारा। हवन और आरती भी यहाँ पर होगी, प्रसाद और महाप्रसाद की भी प्रबंध की गई है यहाँ पर आपके लिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और भी जानकारी के लिए 021-0299-1219 पर आप संपर्क कर पाएंगे। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

your voice. I am singing song. Soup song. Flop song.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz। Play

अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में तो आपने सुना होगा, रिज़्बे और सैंडी के साथ बहुत ही वंडरफुल इंटरव्यू होते हैं अलग लोगों के साथ। WWE में क्या होता है, क्या ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है या रियल फाइटिंग है, इस पर कुछ बातें होंगी। और इनका इंटरव्यू हुआ है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शंकी सिंह, एक 7-foot-tall रेसलर है ये, और हु मेड इट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन ऑफ हरियाणा टू ग्लोबल WWE स्टेज। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर होगी जो आप सुनना चाहेंगे, द ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड है एंड व्हाट्स रियल, ब्रूटल जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू WWE फ्रॉम इंडिया, लाइफ बिहाइंड द सीन्स एट द परफॉर्मेंस सेंटर, रिस्क, इंजरीज और फिजिकल टोल ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग, साथ ही में इनका टाइम विद सलमान खान जब इन्होंने फिल्म भारत में काम किया इनके साथ में, और अनटोल्ड स्टोरीज और लॉकर रूम रियलिटीज़ और थिंग्स जो फैंस को कभी पता नहीं चलता है, इनका ट्रेनिंग अंडर द ग्रेट खाली ये कैसा रहा, टू परफॉर्मिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस, इस पर भी बातें होंगी। तो आप टेक्स्ट करते हैं ड्राइव 5599 पर तो ऑडियो और वीडियो एपिसोड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है बाय इंस्पायर मीडिया, इंस्पायर मीडिया वर्क्स, जो मार्केटिंग, रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोस करते हैं। आप केतन से बातें कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। कुछ देर में ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बातें करेंगे आपके लिए, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: a proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
1: Indelible Homes, your building expert.
2: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's idli or dosa batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
6: Trailer Talkies on Bollywood Buzz.
7: You are listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. पॉडकास्ट आप सुन पाएंगे हमारे अनाउंसर्स द्वारा. अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में मैंने आपको बताया और ब्रेकफास्ट कैचअप एक और पॉडकास्ट है जो आप सुन पाएंगे. कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा, अलग अलग मुद्दों पर बातें होती है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. अगर आप टेक्स्ट करते हैं BF5599 पर तो आप कैचअप कर पाएंगे ऑन द पॉडकास्ट. तो BF टेक्स्ट करें ना भूले 5599 पर, जहां पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, लिंक मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे और क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ किन टॉपिक्स पर बातें होती है, कन्वर्सेशंस होती है विद विजय एंड पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये भी सुनने का मौका रहेगा. सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.
8: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए. तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती.
9: Ayo, G-Funk.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स Reliance Ventilation System से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम Mitsubishi Electric और Toshiba हीट पंप्स के ऑथराइज डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट Reliance Ventilation System ऑन 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Here for all things Brinta. Sniffles on the sofa. Frosty footy games. Oh, riff. Cozy evenings with hot

बस कुछ ही देर तक और हम आपका साथ देंगे संडे जस्टिल में. आपके साथ बहुत ही मजा आ रहा है और थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी. सोलो ट्रेवल टिप की अगर बात किया जाए तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन मैप्स ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इट सेव्स द डे. मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है. आप गूगल मैप्स ऑफलाइन को डाउनलोड करें फॉर योर डेस्टिनेशन क्योंकि ये बगैर डाटा के चलता है और आपको नेविगेट करने में हेल्प करता है. एंड आई हैव डन इट अ नंबर ऑफ टाइम्स नाउ. मुझे भी सीखने में टाइम लगा लेकिन इट वर्क्स अमेजिंगली वेल. तो आप ये कर सकते हैं जस्टिल को आगे बढ़ाते हुए और भी प्यारे गाने.

You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा 6 बजे तक. और ये हमारा फाइनल टाइम मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपसे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है. मैं इस शिफ्ट में बहुत मज़े किए आपके साथ, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा. आपका कंपनी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा. अब हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होती है. अपना बहुत ही ख्याल रखे, क्रिश का बहुत सारा प्यार. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर संडे.

सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उन

अतीत के बारे में सोचने से और भविष्य के बारे में चिंता करने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं, कुछ रास्ते बदल जाते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं, गलती से नहीं बल्कि सोच समझकर। हर चीज किसी न किसी वजह से होती है और एक दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पर गौर करें, इस पर ध्यान धरें और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहे। और यूं ही आगे बढ़ते हुए हमारे साथ आप शामिल रहिएगा, क्योंकि मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो चुका हूं संडे नाइट मेलोडीज में। 7 तारीख जून है, आज रविवार है और रविवार के अंतिम 6 घंटों में आपका साथ देने के लिए मैं यहां पर आ चुका हूं। 104.2 FM और रोबा के ज़रिए से हमारा आपका साथ यहां पर 6 घंटों तक रहने वाला है। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गया है अभी तक और इसको और भी अच्छा बनाने के लिए हम यहां पर आपके साथ में जुड़ चुके हैं। तो रात 12 तक यूं ही हमारा सफ़र एक दूजे के साथ में चलता रहेगा। आपके पसंदीदा गीत संगीत और पिछले सप्ताह क्या कुछ हुआ है, आगे सप्ताह क्या कुछ होने वाला है, वेदर पर भी हम एक नज़र डालते चलेंगे और आपके आसपास कम्युनिटी में क्या कुछ होने वाला है, ये सभी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? आई होप You are in the best shape of your life. अगर नहीं है तो भाई गौर कीजिए, विचार कीजिए कि इसको और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। कुछ जुड़ी हुई बातें हम करते रहेंगे, यूं ही हमारे साथ आप मज़े करते रहिएगा। आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, दिलिक इस्तकबाल कर रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, कियोरा।

0: Chikash.
1: कम्युनिटी न्यूज हमारे पास कुछ है जो आपसे जल्द से हम शेयर कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होने को है आने वाले शनिवार को 13 तारीख जून को, जहां पर सभी डिवोटीज को आमंत्रित किया जा रहा है. सुबह 7 से 8 बजे के बीच में स्थापना पूजा होगा. 8 AM से लेकर शाम 6:30 PM के बीच में चालीसा पाठ होने वाला है बाय वेरियस मंडलीज फॉलोड बाय हवन आरती और शांति पाठ. अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टू परफॉर्म हनुमान चालीसा विद योर मंडली, यू कैन कॉन्टैक्ट 0210-299-1219. याद रहे 0210-299-1219 पर आप कॉन्टेक्ट करें टू रजिस्टर योर मंडली फॉर दिस हनुमान चालीसा. प्रसाद और महाप्रसाद आपके लिए यहां पर इसका बंदोबस्त किया जाएगा थ्रू आउट द डे. हैपनिंग एट 25 ओनस्लो एफ मनुकाउ में बाय दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट. 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्णा मंदिर ऑकलैंड मनाया जा रहा है और इसके लिए इंडिया से पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा को यहाँ पर बुलाया गया है फॉर राम कथा और भगवत कथा. तो श्रीमद् भगवत कथा यहाँ पर होने वाली है बिटवीन 5th to 11th of June. तो शुरू हो चुका है फ्राइडे से मंगलवार या फिर बृहस्पतिवार 11th of June तक यहाँ पर ये कथा होती रहेगी. सहज योगा ग्लोबल मेडिटेशन द्वारा वीकली फ्री मेडिटेशन सेशंस जारी है अलग अलग इलाकों में. मरीज बे में आउटरैम हॉल 478 बीच रोड मरीज बे ऑकलैंड में एवरी मंडे को शाम 7:15 to 8:15 PM के बीच में. माउंट एल्बर्ट में एवरी सैटरडे 10 AM to 12 PM के बीच में ओवाइराका सी स्काउट्स हॉल पर. और हविक में द ग्रीन रूम अक्सब्रिज सेंटर 35 Uxbridge Road हविक में एवरी ट्यूजडे को शाम 7 to 8 PM के बीच में. एंड नॉर्थकोट 27 Lake Road नॉर्थकोट में एवरी ट्यूजडे रात 7 to 8 PM के बीच में आप यहां पर जा सकते हैं. अगेन दिस इज दीज आर मेडिटेशन क्लासेस विच आर ओपन टू एवरीवन रिग्रेटलेस ऑफ एक्सपीरियंस एंड आर ऑफर्ड एंटायरली फ्री ऑफ चार्ज विद द एम ऑफ सपोर्टिंग मेंटल वेलबींग रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड प्रोमोटिंग इनर पीस. ब्राह्मण सभा न्यूजीलैंड द्वारा सभी धर्म प्रेमियों को माफी चाहिए तो आज समाप्त हो चुका है. ग्लो रेड फोथल एनजेड दिस इज अ ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन बाय मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड शाइनिंग अ लाइट ऑन थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया कंडीशंस दैट आर ऑफन इनविजिबल बट कैन हैव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट. इसके बारे में अगर आप जो और भी जानना चाहते हैं यू कैन मेक अ रियल डिफरेंस बाय बिकमिंग अ ब्लड डोनर और एनकरेजिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स टू डोनेट. और इसके लिए पूरी कम्युनिटी को इनवाइट किया जा रहा है टू सपोर्ट द इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव जो हो रहा है 20 June को मनुकाउ एनजेड ब्लड सेंटर में. टू लर्न और मेक योर डोनेशंस यू कैन गो टू www.muskancaretrust.org.nz or follow मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड ऑन फेसबुक. एक साथ में मिलकर आप कई सारे लोगों की जान बचा सकते हैं और ये अवेयरनेस फैला सकते हैं.

0: वेलकम बैक टू हम, जहाँ पर संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. दिल से कार्यक्रम जारी है एंड आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल. नाउ गेटिंग डिस्काउंट्स, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, जब आप ट्रेवल करना चाहते हैं, जब आप कुछ स्पेंडिंग करते हैं, तो वी ऑल ट्राई टू लुक फॉर डिस्काउंट्स ताकि कुछ पैसे बच जाए. एंड ऐसा कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या आपको ये बात हजम होगी कि किसी को पनिशमेंट दिया गया और उस पनिशमेंट में उनको डिस्काउंट मिला है. If you are on the right side of the law and किसी ने आपको आपके साथ गलत किया है और उस बंदे को सजा दी गई and then he received a discount on that, you know, on that punishment, on that jail term, आपको कैसा लगेगा? Well, ऐसा ही कुछ हुआ है न्यूजीलैंड में. इसके बारे में बातें हम करेंगे बस थोड़ी देर में. जुड़े रहे हमारे साथ में.
1: You're listening to Chikash.

0: Chikash.
1: ऑलराइट, तो हमने कहा था कि एक ऐसी कुछ घटना हुई है जहां पर किसी को सज़ा मिली है और सज़ा पर उनको डिस्काउंट भी मिला है, और इसको लेकर काफ़ी सारे लोग, इवन आई एम अ बिट अपसेट अबाउट दिस, क्योंकि एक बंदा है, इनका नाम नहीं लूँगा, ही कैन बी कॉल्ड अ मॉन्स्टर, ही ड्रग्ड एंड रेप वीमन एंड वॉज गिवन अ 10-year प्रिजन स्टार्टिंग पॉइंट. दिस हैज़ बीन रिड्यूस टू 6 years आफ्टर क्रेडिट्स इंक्लूडिंग ए गुड कैरेक्टर डिस्काउंट इनको मिला है टू अबोलिश इफ री इलेक्टेड. जॉर्ज मर्फी स्टार्लिंग हैज नाउ बीन रिलीज्ड बाय पैरोल एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेविंग लेस देन 2 years, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है. नाउ द फॉलोइंग विल हैव सम डिटेल्स दैट सम रीडर्स, सम लिसनर्स मे फाइंड डिस्ट्रेसिंग. एक महिला है, इन्होंने अपने जिंदगी के सबसे वर्स्ट नाइट के बारे में बताया पुलिस को. And it took 4 more years before the man responsible for the harm caused to the woman faced trial. इन्होंने evidence दिया in front of the man accused in a room of strangers, and इनको बताया गया कि ये झूठ बोल रही थी. It was the hardest thing she had ever done. इस महिला का कहना है कि I wouldn't wish this experience on anyone. इनका नाम ईव है. And she has spoken to staff because of a development in her rapist case that she believes shows how the justice system favors offenders over the well-being of victims. George Murphy Starling drugged Eve in 2011 aur phir inka fayda uthaya, aur she was one of the 2 victims on the same night jinko George ne apna shikar banaya tha, at the same party at their home, a flat jahan par 4 महिलाएं रहती थी when they used to go to university together. He was charged over those incidents in 2020. By then, he had already served time for the 2011 rape of a third woman. Eve felt relieved when a jury found Starling guilty of her drugging and rape case in 2024. She told the court at his sentencing of the everlasting impact जो इनके जीवन पर हुआ है. Then came the discounts. Starling received credits for youth and prior good character. अब पहली बात तो ये है कि वो पहले कैसे था, उसके आधार पर इनके जेल टाइम को रिड्यूस किया गया. डिस्काउंट्स दैट वर ऑल्सो ऑफर्ड टू हिम एट हिज 2013 सेंटेंसिंग. अभी हाल ही में नेशनल ने अनाउंस किया है प्लान्स टू अबोलिश गुड कैरेक्टर डिस्काउंट्स फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स. दिस इज अनदर रीजन वाई आई एम ऑल प्रो नेशनल, क्योंकि इस बंदे ने इतनी सारी महिलाओं की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, और पुराने लॉज को फॉलो करते हुए इनको, इनके सज़ा को कम कर दी गई है, और इसके खिलाफ अब नेशनल गवर्नमेंट या फिर नेशनल पार्टी सख्त कदम उठा रही है. दे आर प्लानिंग टू अबोलिश गुड कैरेक्टर डिस्काउंट्स फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स, क्योंकि इनको तो डिस्काउंट मिल जाता है, उनका क्या जिन पर जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है. तो अगर नेशनल री इलेक्ट हुए, ऐसे ऑफेंडर्स जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. मैन, दिस गाय गोट अ 40% डिस्काउंट ऑन हिज जेल टाइम. जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट डिड द विक्टिम गेट.
0: यू आर लिसनिंग टू चिकाश.

0: मतलब क्या है कि मैसेज
1: बहुत
0: कर
1: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
0: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
1: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja, brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Weekdays 6 to 10 a.m.
3: It's cold outside and the couch is on your mind, but you can't relax till you leave hunger behind. Hot pumpkin soup will really help you unwind. It's what you need.
4: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriver.

0: ब्रांच भी है।
1: वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। कल लोटो का, नॉट लोटो का, पावरबॉल लोटो का विन, जो विनिंग अमाउंट था $4 million था। आई हैवन्ट चेक द रिजल्ट्स कि ये जीता जा चुका है या नहीं, लेकिन 4 million क्यों था, क्योंकि पिछले बुधवार को $28.6 million जीता जा चुका है एशबर्टन में। और यहाँ पर एक बंदे ने अपना टिकट खरीदा और सरडे रात को नंबर्स निकले 1, 9, 36, 13, 11 and 4। बोनस बॉल था नंबर 24 और लकी नंबर 9 वॉज द पावर बॉल। और एज सून एज दिस नंबर्स केम आउट, फोन्स स्टार्टेड रिंगिंग एंड इट वॉज एशबर्टन। एशबर्टन में फोर स्क्वायर है नेदरबी में, फोर स्क्वायर नेदरबी, यहाँ पर यह टिकट बेचा गया था, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा है कि किसने इसको जीता है। तो शायद जिस बंदे ने भी जीता है उनको मालूम है, या फिर मालूम नहीं भी है कि उन्होंने जीता है। अगर आप जानते हैं किसी को जो रेगुलरली लोटो खेलते हैं एंड माइट हैव बॉट फ्रॉम नेदरबी एशबर्टन फोर स्क्वायर से, तो भाई चेक अपन देम। अगर वो गायब हो चुके हैं तो भाई आप समझ ले कि वो आपसे बातें नहीं करना चाहता है, लेकिन शायद ये ऐसा कोई शख्स है जो अपना समय लेकर सामने आएगा, प्लान करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुलाकर तब जाकर वो लोटो का अमाउंट क्लेम करेगा। वैसे से लोटो का इंडिया से है तो शायद आप नहीं जानते होंगे, लोटो का इज़ अ सिटी इन फिजी। तो लोटो का एंड नॉट लोटो का, हाँ, तो लोटो का $28.6 million का टिकट ये जीता जा चुका है एशबर्टन में पिछले बुधवार को। अभी तक जीतने वाला शख्स सामने नहीं आया है।

वेलकम बैक टू हम, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। संडे नाइट मेलोडीज दिल से कार्यक्रम जारी है। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन द एयर वेव्स ऑफ 104.2 FM एंड ऑन रोवा। दुनिया के किसी भी कोने में है आप सभी का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वंस अगेन अ बिग विना कबाकलेवू फॉर मेकिंग अस द नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन इन न्यूजीलैंड। आपका साथ मिलता रहेगा तो यूं ही और भी ऊंचाइयों तक हम पहुंचते रहेंगे। आपको साथ लेकर हम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस है, मीडियम साइज बिजनेस है या फिर एक फ्लोरिशिंग बिजनेस है, अगर आपको और भी लोगों तक पहुंचना है, वेल वी आर द नंबर वन रेडियो स्टेशन इन हिंदी रेडियो टू गेट यू वेयर यू वांट टू बी। आइए हमारे साथ में जुड़ जाइए और हदों को पार करेंगे एंड बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, और भी ज़्यादा मनोरंजन आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे राइट हियर ऑन हम। हमारे सेल्स टीम काशिका से आप संपर्क करें या फिर कोई भी जरिया नहीं तो बस हमें आप एक मैसेज भेजें ऑन buzz@hum.fm.com एंड फ्रॉम देयर विल टेक इट थ्रू विथ यू एंड विल सी कि हम क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए। तो बस यूँ हमारे साथ में आप जमे रहें और भी ज़्यादा सक्सेस आपको हम दिलाएंगे, आप हमें भी और भी ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। और सक्सेस की बातें चली तो हमारे पॉडकास्ट के देवता और देवी यानी कि सैंडी एंड रूजबे, दे हैव अगेन वॉन द एनजेड रेडियो एंड पोस्टकार्ड पॉडकास्ट नॉट पोस्टकार्ड एनजेड रेडियो एंड पॉडकास्ट अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एशियन language program, the best Asian podcast in New Zealand. So congratulations to our unfiltered drive team, unfiltered team, Sandy and Rusbe. आइए इस घंटे की शुरुआत करते हैं with this awesome track. इस घंटे पर बात करेंगे about the international United Nations calendar. तो क्या कुछ हो रहा है उसके अंतर्गत।

26 जून है आज एंड लुकिंग एट द यूनाइटेड नेशंस कैलेंडर तो आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. वर्ल्ड फूड सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट. एक्सेस टू सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ सेफ फूड इज की टू सस्टेनिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग गुड हेल्थ. Foodborne illnesses are usually infectious or toxic in nature and often invisible to the plain eye, caused by bacteria, viruses, parasites, or chemical substances entering the body through contaminated food or water. Food safety has a critical role in assuring that food stays safe at every stage of the food chain, from production to harvest, processing, storage, distribution, all the way to preparation and consumption. With an estimated 600 million cases of foodborne illnesses annually, unsafe food is a threat to human health and economies, disproportionately affecting vulnerable and marginalized people, especially women and children, populations affected by conflict, and migrants. An estimated 420,000 people around the world die every year after eating contaminated food, and children under 5 years of age carry 40% of the foodborne disease burden, with 125,000 deaths every year. This is very, very alarming. 420,000 logo ki mrityu hoti hai just because of eating food that is contaminated. Sochiye iske bare mein. कई सारी बातें इससे जुड़ी है. एक तो जो टॉक्सिन्स होते हैं फूड में, पैरासाइट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया इत्यादि, एंड देन खाने में जो केमिकल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं टू मेक इट बेटर. काफ़ी रिपोर्ट्स हमने पढ़े हैं कि वाटरमेलन में डाई डाला जाता है और आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाले जाते हैं टू मेक इट स्वीट, और ऐसे ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है. मटर में डाई डाले जाते हैं टू मेक इट मोर ग्रीन, और कई सारी वीडियोस को आपने देखा होगा. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो कि आपका खाना, आपका फूड कहाँ से आ रहा है, किस पैसेज को फॉलो किया है, क्या जो ब्रांड्स आप खरीद रहे हैं दे फॉलोइंग ऑल दी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को आज एम करता है टू ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बोर्न रिस्क, कंट्रीब्यूटिंग टू फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जॉइंटली फैसिलिटेट the observance of World Food Safety Day in collaboration with member states and other relevant organizations. तो बहुत awesome awesome article मैं पढ़ रहा था and I can't go over all of it. तो I would sincerely urge un.org के पेज पर आप जाए, food day articles आप पढ़े, and आपको पता चलेगा कि किस तरह से you can get involved in doing your share in seeing that food safety, में आप भी अपना हाथ बटाएं.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Irvine, sirf rova par.
1: At Woolworths, whether it's casserole or stir fry, we've got chicken for every occasion. Like our fresh chicken breast fillets, boneless, skinless, on special at just $12.90 a kg, large tray only. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
4: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden, queen size, now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.

फीफा वर्ल्ड कप ये बस शुरू ही होने वाला है कमिंग वीकेंड। ग्रुप ए का पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच में होगा इन मेक्सिको एट 7 AM ऑन फ्राइडे 12th of June। वही रोज फ्राइडे को साउथ कोरिया और सेकिया खेलने वाले हैं एट 2 PM एंड देन सैटरडे को कनाडा एंड बोस्निया इन कनाडा खेलेंगे एट 7 AM और फिर 1 PM पर USA और पैराग्वे खेलने वाले हैं। तो ग्रुप ए का दो मैचेस रहेंगे ऑन सैटरडे एंड देन ऑन फ्राइडे सॉरी फ्राइडे को एंड सैटरडे ग्रुप बी का एक मैच रहेगा एंड देन ग्रुप डी का एक मैच रहने वाला है। तो एज आई सेड यस्टरडे, अगर आपने कल मेरा प्रोग्राम सुना तो मैंने कहा था कि मेक्सिको में भी ओपनिंग सेरेमनी होगा, कनाडा में भी ओपनिंग सेरेमनी होगा एंड यूएस में भी ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। मेक्सिको में ओपनिंग सेरेमनी न्यूजीलैंड समयानुसार 6:30 AM ऑन फ्राइडे 12th June। कनाडा का ओपनिंग सेरेमनी आप देख सकेंगे न्यूजीलैंड में ऑन सैटरडे 5:30 AM सैटरडे 13 June और USA वाला ओपनिंग सेरेमनी सैटरडे 13 June दिन में 11:30 बजे से शुरू होगा। दैट इज़ 90 मिनट्स प्रायर टू द मैचेस ओपनिंग सेरेमनी ओपनिंग एंटरटेनमेंट आप देखने वाले हैं एंड इट केम टू केम एज अ सरप्राइज। कनाडा में जो ओपनिंग होने वाला है वहाँ पर ओपनिंग परफॉर्मेंसेस में एक परफॉर्मेंस होने वाला है बाय नोरा फतेही। वेल व्हाई नॉट, वो वहाँ की सिटीजन है कनाडा की एंड शी इज़ अ यू नो शी इज़ अ सेलिब्रिटी और बॉलीवुड स्टार है, अच्छा गाती है, अच्छा नाचती है एंड व्हाई नॉट ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द फीफा वर्ल्ड कप। क्या आपको मालूम है कि इन टोटल हाउ मेनी टीम्स आर देयर? अगर मालूम है तो हमें बताएं या फिर थोड़ी देर में ये जानकारी हम आपको देंगे।

हमने पूछा था कि आपसे कि वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स है. वेल दिस ईयर या फिर दिस वर्ल्ड कप में अनलाइक द प्रीवियस टाइम्स 48 टीम्स हिस्सा लेने वाली हैं, और प्रीवियस वर्ल्ड में 32 टीम्स हिस्सा लेती थी, लेकिन 2026 फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम्स हिस्सा लेंगी, डिवाइडेड इंटू 12 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स ईच. द टू टॉप टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप प्लस 8 best third place teams advance into the knockout stages, and a new round of 32 has been added, requiring the eventual champion to play 8 matches instead of 7. So kuch naya try kiya ja raha hai, and a vast number of teams or countries have been given the opportunity to take part in this year's ya phir in this FIFA World Cup 2026. This will be played in US, Mexico, and

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox. Hum. Jen didn't think she needed a DVS system.
1: Oh, I've got insulation in that.
0: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
1: Ah, yeah.
0: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it. The heart of a healthy home,
2: DVS. रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
3: Non-stop Bollywood.
4: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
3: हम playing Bollywood's biggest hits.
5: Dil se,
3: dil se.
6: गेम्स की बातें हम कर ही रहे थे तो सुपर रग्बी में कल जो मैच हुआ बिटवीन द ब्लूज एंड क्रुसेडर्स, जो आग क्रुसेडर्स ने लगाई है उसका धुआं अभी भी निकल रहा है. ब्लूज के फैंस अभी भी दे आर हर्टिंग क्योंकि थोड़ा मुड़ा नहीं, बहुत ही बुरी तरह से बस्ता भर भर कर क्रुसेडर्स ने उनको पराजित किया है. तो ऑल द बेस्ट टू ब्लूज इन द अपकमिंग मैचेस, और शायद अब हरिकन्स से इनका सामना होगा, और हरिकन्स तो भाई तोड़ फोड़ करेंगे, एकदम से उजाड़ने वाले हैं ब्लूज़ को. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स दैट हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स. और भी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीकेंड जब सेमीफाइनल्स का खेल खेला जाएगा.

0: ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
3: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: दिल से
4: वेलकम बैक टू हम जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। संडे नाइट मेलोडीज़ का मज़ा आप ले रहे हैं एंड दिल से कार्यक्रम ये जारी है 104.2 FM और रोवा के ज़रिए आप हमें सुन रहे हैं। नाउ अगर आप सोच रहे थे कि क्यों 702 AM पर हम अब नहीं सुनाई दे रहे हैं, देयर फ्रीक्वेंसी अब इज़ नो मोर फॉर अस और नाउ यू कैन ओनली लिसन टू अस ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा। एंड what better way to do that than listening on Rova, क्योंकि crystal clear digital voice आपको मिलता है और इसके अलावा हमारे जितने भी हम प्लस stations है इसका भी आनंद आप ले सकते हैं। जैसे कि हमारे हम के music stations के नीचे हमने बहुत सारी चीज़ डाल कर रखी है। एक तो है हम rewind जहाँ पर it has become Rova's number one music station, जहाँ पर बॉलीवुड्स गोल्डन एरा 60s और 70s के हिट्स हम बजाते हैं। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू कम एंड गेट सम फ्रेशर म्यूज़िक हम 80s जूक बॉक्स, यहाँ पर 80s के म्यूज़िक हमने डाले हुए हैं। फिजी भजन फिजी कीर्तन सुनना चाहते हैं, फिजी के लिए फिजी भजन का प्लेटफॉर्म है, कीर्तन के लिए फिजी कीर्तन संग्रह प्लेटफॉर्म है। चर्दी कला भी हमने डाला है यहाँ पर फॉर पंजाबी हिट्स और राहत फ़तेह अली खान का भी एक चैनल यहाँ पर 24/7 चल रहा है जहाँ पर सूफ़ी कव्वाली बाय राहत फ़तेह अली खान आप 24/7 नॉन स्टॉप सुन सकते हैं जब भी आप चाहे जहाँ पर भी आप चाहे। तो रोवा भाई अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि रोवा के ज़रिए हमने कई कॉम्पिटिशन्स भी रचाए हुए हैं। यू गो देयर एंड चेक इट आउट और डू लेट अस नो कि आप इसके बारे में क्या फील करते हैं। आइए इस घंटे की शुरुआत करते हैं विद सम ऑसम म्यूजिक।

वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर और मनीष पोल प्लस चंकी पांडे की मूवी आई है जवानी तो इश्क होना है नाउ। टोटल वरुण धवन स्टाइल की ये मूवी है एंड अ वेरी लाइट हार्टेड लव स्टोरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फुल ऑफ कॉमेडी एंड रोमांस। तो इस मूवी के बारे में आपको बताएं तो क्रिटिक्स रेटिंग इसको मिला है 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, एवरेज यूजर रेटिंग भी इसको 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिला है और ये मूवी रिलीज हुई है अभी पिछले हफ्ता ही 5th ऑफ जून को शुक्रवार को लगी है थिएटर्स में एंड काफ़ी लोग इसको एकदम पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा बंदर, नाउ अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड में ये मूवी रिलीज नहीं हुई है फिलहाल, इंडिया में इसको रिलीज़ किया गया है। हिंदी क्राइम थ्रिलर मूवी है, सानिया मल्होत्रा, इंद्रजीत सुकुमारन, सबा आज़ाद और नन अदर देन बॉबी देओल इस मूवी में शामिल है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मूवी लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी न्यूजीलैंड में इसकी एंट्री नहीं हुई है। हाँ, माँ बहन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आई है एंड आई हैव वॉच्ड 3/4 ऑफ इट एंड आई हैव एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धरना दुर्गा इस मूवी में नज़र आए हैं। मार्वलस स्क्रीन प्ले, यूल एंजॉय एवरी बिट ऑफ दिस मूवी। क्रिटिक्स रेटिंग इसको मिला है 3.5 आउट ऑफ 5, एवरेज यूजर रेटिंग 3.5 इसको मिला है। अगेन यू कैन वॉच दिस ऑन नेटफ्लिक्स। और भी मूवीज़ के बारे में हम बातें करते चलेंगे थोड़ी थोड़ी देर में।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz Available at all leading stores.
5: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just 289. Heat pump dryer just 599. All-in-one washing machine and dryer 799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Wormsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
7: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
8: एज अ कंट्री न्यूजीलैंड के बारे में काफ़ी लोगों के कई सारे ओपिनियंस हैं एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड इज़ वेरी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड यहाँ पर जो वास्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ से लोग आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है उनको एंड बिजनेस करने के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन मी कमिंग फ्रॉम फिजी मुझे 3 ही घंटे लगते हैं इन अ फ्लाइट और यहाँ के जियोग्राफी यहाँ के नेचुरल सेटिंग को देखें तो आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड और ऐसा ही कुछ मानना पहले था एक ट्रैवल ब्लॉगर है जिन्होंने कहा कि शी यूज टू थिंक एनजेड वाज बोरिंग लेकिन देयर आर 4 trips दैट हैज़ प्रूव्ड हर रॉन्ग लोना थोनबा ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है एंड बिफोर बिकमिंग अ ट्रैवल फोकस्ड जर्नलिस्ट इन 2017 इन्होंने कहा है कि शी वाज वन ऑफ दोज कीवीज हुड सीन मोर ऑफ द वर्ल्ड देन दे हैड सीन इन देयर ओन कंट्री ऐसा काफ़ी लोगों ने किया है कि देश विदेश घूम लेते हैं लेकिन अपने ही बैकयार्ड में क्या खूबसूरती है क्या वंडर्स है इसके बारे में इनको पता ही नहीं रहता है तो इनका कहना है कि कन्विंस्ड एज अ किड दैट एवरीथिंग एक्साइटिंग हैपेंड एल्सवेयर I crossed the ditch to Australia and soon as I could, eventually moving on to the UK and the US. Weekends and holidays were spent exploring my new surroundings and while homesickness often overcame me, I had no desire to move back home until my dad died and it suddenly seemed imperative to be around family. Still, Aotearoa's remoteness frustrated me until I began exploring it properly, both through work and in my own time. Now I can honestly say that while it's far from perfect, it's a place I'm happy to call home. The beautiful variety of its landscapes, perfect for all manner of outdoor activities, and exceptional kai being among the main reasons. NZ, New Zealand has certainly given me good time since I've been back, but these 4 experiences have been etched particularly deep in my memory. So, kaun se 4 ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ये ट्रैवल जर्नलिस्ट बात करने वाली हैं इस पर हम जानकारी थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे

0: Hollywood's biggest hits.
1: You're listening to Chikash.
2: ट्रेवल जर्नलिस्ट के बारे में बातें हम कर रहे थे, जिनका ये मानना था, ये सोचती थी कि न्यूजीलैंड छोड़कर बाकी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब वो लौट कर आई न्यूजीलैंड एंड शी वेंट थ्रू फोर एक्सेप्शनल ट्रेवल रूट्स, देन शी केम टू रियलाइज़ कि न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। और कौन सी वो चार जगह हैं जहाँ पर इन्होंने अपना समय स्पेंड किया है? नंबर वन इज़ ब्लैक वाटर राफ्टिंग इन वाइतोमो। I have done this and I would certainly recommend this. थोड़ा सा आपको ट्रेवल करना होगा, अगर आप ट्रेन से जाते हैं, टाइम आपको निकालना होगा, हो सके तो आप मेक इट अ टू डे ट्रिप, जहाँ पर आप एक बेच हायर कर ले या फिर अकोमोडेशन आप कहीं पर ढूंढ ले अराउंड वाइतोमो, तो थकान आपको कम महसूस होगी when you do ब्लैक वाटर राफ्टिंग इन वाइतोमो। द नेक्स्ट वन शी सेज इज हाइकिंग द इस्थमस पीक इन वानाका। ये क्या है? Royce Peak may be the most popular day hike in these parts, but इनका कहना है कि in my book, the climb to 1,385 meter Isthmus Peak, about a half hour drive away, is even better. और इसके अलावा नंबर थ्री पर इन्होंने कहा है कि joining a wellness retreat in Queenstown. A lot of people do this. इनका मानना है कि it is more intense than I expected. Think pre-dawn yoga sessions followed by hours-long sub-alpine hikes. And the fourth one she did was celebrating Matariki in the Bay of Islands, beginning with a dawn cruise that introduced me to the night sky according to Maori astronomy, and ending with a Matariki-inspired meal at the winery Paroa Bay. The Bay of Islands inaugural Matariki festival made me realize there is magic to be found in the sometimes depressing seeming North Island winter. So these are the four places jo inhone recommend kiya hai apne book mein ki people have to be there, go there to truly see the magic of New Zealand.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert.

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast. Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम

Hey yo, welcome back to Sunday Night Melodies, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. 104.2 FM और रोबा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. इस घंटे पर हम तमाम लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो काम की तैयारी कर रहे हैं फॉर देयर नाइट शिफ्ट. कुछ लोगों ने तो शुरू भी कर दिया है एट 8, कुछ लोग 10 पर शुरू करते हैं नाइट शिफ्ट, एंड कुछ लोग अभी काम बंद करने की तैयारी कर रहे होंगे, दोज हु आर डूइंग आफ्टरनून शिफ्ट. तो भाई थके हारे अब घर की ओर जाना है, कोई भी जल्दबाजी ना करे. संडे की रात है, कई जगहों पर अब रोड क्लोजर्स हो चुके होंगे जहां पर रोड वर्क्स जारी है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर केयरफुल, घर ही पहुंचना है तो जितना भी समय लग जाए कोई बात नहीं, जल्दबाजी ना करें. डू नॉट ओवर स्पीड, डू नॉट बिकम विक्टिम्स ऑफ रोड रेज एक्सीडेंट्स, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने दिमाग अपने घुटनों में रखते हैं और सोचते नहीं कि वो रास्ते पर क्या करते हैं. तो यू बी द बेटर पर्सन, आप ज़्यादा भड़के मत, बस लंबी सी सांस ले और सोचे कि घर जाएंगे, आराम से शावा करेंगे, अपना डिनर करेंगे, फिर गरम सी एक चाय बनाकर या फिर एक प्यारी सी बेवरेज बनाकर आप अपनी रात व्यतीत करेंगे. वाह, मज़ा ही आ जाएगा. तो डू नॉट रश ऑन द रोड्स. एंड ऑन द अदर साइड, जो पीपल शुरू कर रहे हैं काम, शुरू करने जा रहे हैं, मेक श्योर यू आर फुली इक्विप्ड विथ योर PPE. अगर आपको सेफ्टी बूट्स पहनना है, सेफ्टी ग्लासेस पहनने हैं, हेलमेट हार्ड हेड पहनना है, ग्लव्स पहनना है, मेक श्योर कि ये सभी सही तरह से आपने पहने हैं. दीज आर नॉट एक्सपायर्ड एंड दे आर फिट फॉर पर्पस. अगर नहीं है तो अपने सुपरवाइजर्स, अपने एम्प्लॉयर से आप ज़रूर इसकी मांग करें, और बिना इसके अगर काम नहीं हो सकता है तो नहीं ही कीजिए. You have the right to say no to any unsafe work conditions. आसपास कुछ चीज़ें पड़े हैं, उसको टाइडी कर ले, स्टेप बैक, टेक 5, एनालाइज कर ले कि यस एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, सेफली अपना काम आप कर सकते हैं, तभी आप इंगेज करें. आप सभी का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं इन संडे नाइट मेलोडीज. आइए इस घंटे पर हम आपके साथ में एंजॉय करने वाले हैं प्यारे प्यारे गज़ल, कुछ नगमे जो मेरे दिल के करीब है, जो आपके दिल के करीब है, आपके दिल की बातें, अपने दिल की बातें इन गज़लों में हम सुनेंगे. फर्स्ट अप, जगजीत सिंह की आवाज़ है.

संडे नाइट मेलोडीज़ में 9 से 10 बजे के बीच में गज़लों का सिलसिला हम जारी रखते हैं, एंड गज़ल की बातें हो और नगमे हो, शेर व शायरी ना हो तो भाई बात कुछ फीकी ही रह जाती है। तो एक शायरी मेरे हाथ में लगी है, शायरी है, कविता है मेरे हाथ लगी है, और काफ़ी डीप इसका मतलब निकल कर आता है अगर आप इसके बारे में सोचेंगे गौर से। तो ध्यान से सुने और सोचे कि ये कविता कहना क्या चाहती है। शीर्षक है सोचता हूँ। सोचता हूँ कि कमी रह गई शायद कुछ, या जितना था वो काफ़ी ना था। कि कमी रह गई कुछ शायद, या जितना था वो काफ़ी ना था। नहीं समझ पाया तो समझा दिया होता, या जितना समझ पाया वो काफ़ी ना था। शिकायत थी तुम्हारी कि तुम जताते नहीं, शिकायत थी तुम्हारी कि तुम जताते नहीं। प्यार है तो कभी जमाने को बताते क्यों नहीं। अरे मोहब्बत की क्या मैं नुमाइश करता, मेरे आँखों में जितना तुम्हें नज़र आया, क्या वो काफ़ी ना था। सोचता हूँ कि क्या कमी रह गई, क्या जितना था वो काफ़ी ना था।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

एक छोटा सा आर्टिकल मेरे हाथ लगा है ऑन स्टफ एंड दिस इज अबाउट अ टाउन जिसका नाम है जेराल्डीन. डू यू नो वेयर दिस इज? ये साउथ वेस्ट ऑफ क्राइस्टचर्च इन साउथ आइलैंड में है. और क्यों ये इतना प्यारा है इसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इफ़ यू आर समवन जो आर्किटेक्चरल जेम्स आर्किटेक्चरल वंडर्स को तलाश करते रहते हैं और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को बहुत बारीकी से आप पसंद करते हैं, तो दिस माइट बी अ टाउन जहां आप पर आपको विजिट करना चाहिए, या फिर इवन यू कैन बाय प्रॉपर्टीज़ इन दैट टाउन विच आर अप फॉर सेल. तो कौन सा टाउन है, कहां पर है और क्यों ये इतना ख़ास है, इसके बारे में जानकारी बस थोड़ी देर में. फ़िलहाल आइए गज़लों का ये सिलसिला और भी आगे बढ़ाते हैं गुलाम अली की आवाज़ में.

दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

0: You're listening to Chikash.
1: वेलकम बैक टू हम सन एंड मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. पिछले घंटे पर हमने बताया था विल बी टॉकिंग अबाउट अ टाउन कॉल जेरल्डीन. इसके बारे में बात करेंगे बस थोड़ी देर में. प्लस अभी थोड़ी देर में आपसे हम शेयर करने वाले हैं वेदर न्यूज़ एज वेल कि आने वाले सप्ताह वेदर मौसम हमारे लिए कैसा होने वाला है. इज इट गोना बी वेट एंड विंडी जैसा पिछले सप्ताह था या फिर फाइनली द सन विल बी कमिंग आउट ब्लेजिंग. तो आई विश आई होप लेकिन ये पता चलेगा बस थोड़ी देर में जब आपसे हम शेयर करेंगे द वेदर न्यूज़ फॉर द कमिंग वीक. तो जुड़े रहे हमारे साथ में. मैं हूँ जिकाश, आप सभी का दोबारा स्वागत कर रहा हूँ इन संडे नाइट मेलोडीज़.

0: Alright, let's look at the weather for the coming week first and foremost on this hour. So, 7 days extended weather report ke anusar, Sunday, jo aaj guzra hai, ye to bas khatam hone wala hai, 2 ghante bhi baki hai, and badli dhoop ka silsila aaj chalta raha hai. Monday and Tuesday ko bhi aisa mausam rehne wala hai, mainly fine, chance of a shower in the afternoon and evening, so mark liye. Tuesday ke liye mainly fine, chance of a shower in the afternoon. Budwar ko dhoop hi dhoop khilne wali hai for 10th of June. Brihaspatibar ko partly cloudy with light winds. Aur Shukrawar ko partly cloudy with light winds. So I think it's good news for people who will be out and about. Monday or Tuesday ko shayad thodi barish ho. Anitha mausam saaf hi rahega. Wednesday, Thursday, Friday dhoop aur badli ka silsila rehne wala hai. एवरेज टेम्परेचर को देखें तो मंडे को 18 डिग्रीज और फ्राइडे को 15 डिग्रीज के बीच में ही टेम्परेचर रहने वाले हैं. दिन में ओवरनाइट टेम्परेचर्स ठंड पड़ने वाली है. मंडे को 12 डिग्रीज, ट्यूसडे थ्रू टू फ्राइडे 7 और 6 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है ओवरनाइट. तो क्लियर स्काइज दैट मीन्स चिली नाइट्स. आप अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशंस कर लीजिएगा.
1: हम पर आपके साथ हैं चिकाश.

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: You're listening to Chikash.
1: बातें हम कर रहे थे अबाउट रियल स्टेट और उससे हटकर ज्योग्राफी या फिर डिजास्टर्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं. तो वेलिंगटन स्ट्रीट, मैसिव सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एज रिवर ऑफ सीवेज फ्लड्स वेलिंगटन स्ट्रीट. वेलिंगटन में ये दिक्कत तो काफ़ी दिनों से है एंड अर्लियर दिस ईयर लाइट लास्ट ईयर वहाँ पर सीवेज लीकेज हुआ था स्ट्रेट इंटू द हार्बर. लेकिन अब ये विद कंटिन्यूड रेन ये मामला और भी बढ़ रहा है क्योंकि स्ट्रीट्स में अब सीवेज आने लगा है. द स्मेल इज़ एक्चुअली डिस्गस्टिंग, ये कहना था आइलैंड बे रेसिडेंट का. एंड डिस्क्राइब द सीन एज रॉ सीवेज, फेकल मैटर एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्लोड डाउन द परेड ड्यूरिंग फ्राइडेज मॉर्निंग स्टॉर्म. वाओ, आई डोंट वांट टू इमेजिन दिस. इसके वीडियोस भी स्टफ पर डाले गए हैं और वीडियोस टेकन अर्ली आवर्स शोड वेस्ट वाटर बबलिंग अप फ्रॉम मेंटेनेंस होल कवर्स आफ्टर सडन डाउनपोर अबाउट 1 AM सेंडिंग अ स्टिंकिंग स्ट्रीम ऑफ फीसिस. This actually happened on June the 4th. By morning, residents were left dealing with debris in front yards, a closed early learning center, and renewed frustration about repeated flooding in the suburb. Some locals still cleaning up from flood damage in April are now asking how many times the same area can flood before the city's aging infrastructure is fixed. Now, I'm not shooting people or pointing fingers here. Isn't the ex-Labour minister the current mayor of Wellington? सोचिए इसके बारे में. कंट्री खराब करने के बाद अब सिटीज खराब हो रहे हैं. आप ही इसका जज इसको जज कीजिएगा.

कभी कभार कुछ चीज़ें फेमस हो जाती हैं फॉर द रॉन्ग रीजंस, एंड ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है. यू मस्ट हैव रेड अबाउट कॉकरोचेस. अगर आपको फोबिया है कॉकरोचेस से तो वेल दिस न्यूज़ इज़ नॉट फॉर यू. लेकिन एग्जॉटिक कॉकरोचेस ये भी कुछ होता है भाई. क्या होता है हम बातें करेंगे इसके बारे में अगले घंटे पर, क्योंकि ये इतने एग्जॉटिक है कि इसको स्मगल किया जा रहा है और इलीगली इसको ब्रीड किया जा रहा है, नॉट हियर बट इन ऑस्ट्रेलिया. क्या क्या करते हैं यार वहाँ के लोग, इसके बारे में बातें करेंगे हम अगले घंटे पर ऑन संडे नाइट मेलोडीज. फिलहाल मैं हूँ जिकाश, मेरा साथ रहने वाला है राइट टिल मिडनाइट.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम।

Hey Bula, welcome back to Sunday Night Melodies. मैं हूं जिकाश और आपसे हम बातें कर रहे थे अबाउट कॉकरोचेस पिछले घंटे पर और दे हैव अ वैल्यू ऑफ 200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. वेल, समथिंग हैज हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया और इसके बारे में बातें हम आपसे करेंगे ऑन दिस आवर. फिलहाल आइए शुरू करते हैं ऑन दिस ऑफ दिस आवर बाय अ ट्रैक फ्रॉम कुमार सानू एंड अलका याग्निक. इस गीत के बाद में हम कॉकरोचेस के बारे में बातें करेंगे. गेट रेडी.

ऑलराइट, क्या आप तैयार हैं कॉकरोचेस के बारे में जानने के लिए? एक फोटो है जहां पर एक बंदे के हाथ में कॉकरोच है. इट इज एस लॉन्ग एस हिज पॉइंटर फिंगर एंड इट डज नॉट लुक गुड. वेल, ओवर 100,000 इलीगल एग्जॉटिक कॉकरोचेस को सीज किया गया है फ्रॉम अ कमर्शियल ब्रीडर इन बेथर्स्ट इन व्हाट ऑफिशियल से इज द लार्जेस्ट सीजर ऑफ illegal exotic invertebrates in the country. Inme shamil hai Dubia cockroaches and Madagascar hissing cockroaches, and they have a street value of, hold on, New Zealand $243,000. Isn't that just surprising ki cockroaches ko bhi log breed karte hain, exotic ones, aur ye itne mehenge hote hain bhai, karte kya hai iska? Something to ponder about.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे यहाँ पर यानी कि न्यूजीलैंड समय अनुसार पहला मैच खेला जाएगा और उसके बाद कई सारे मैचेस होंगे। 48 टीम्स हैं इन टोटल और एक महीने लग जाएंगे टू गेट टू द फाइनल्स। तो हैव यू चोजन योर टीम? इफ यू हैव वेल, इसके बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे को इन रेडियो पब। आप एक हफ्ता आपके पास, आप देख ले, सोच ले, समझ ले और फिर एक टीम को चूज़ कर ले जिसको आप बैक करने वाले हैं टू विन द फीफा वर्ल्ड कप 2026। एंड वील सॉर्ट ऑफ हैव अ बैटिंग, इनफॉर्मल बैटिंग, देखते हैं कि कौन किन की टीम जीतने वाली है फीफा वर्ल्ड कप। तो सोचिएगा इसके बारे में एंड चूज़ अ टीम केयरफुली।

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

ऑलराइट, हमारा तो यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है. हमने तो बहुत ही इन्जॉय किया है आज के इस कार्यक्रम को. आई होप यू ऑल्सो हैड अ गुड टाइम विथ मी इन संडे नाइट मेलोडीज. अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक सैटरडे को इन रेडियो पब. तब तक के लिए आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा. वी विल बी हैविंग अ लॉट टू टॉक नेक्स्ट वीक एज वेल. सेमीज ऑफ द सुपर रग्बी पैसिफिक ये होने वाला है, सेमीफाइनल्स. इसके साथ में फीफा वर्ल्ड कप भी किक ऑफ होगा. नेशनल रग्बी लीग का वीक 15 ये भी कमेंस हो जाएगा नेक्स्ट वीक. और विल बी ऑल्सो बिल्डिंग अप टू द T20 वीमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट. तो ये ढेर सारी बातें करनी हैं. इसके लिए तैयारी हम भी करेंगे, आप भी खुद को तैयार करें. एंड दिस वीक मेक श्योर जो भी आप कर रहे हैं, बी सेफ आउट देयर. मेक श्योर योर किड्स आर ऑल्सो सेफ. सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या कुछ है, डू अ डीब्रीफ एवरी वीक ताकि इनके दिमाग में चीज़ें भरी रहे अबाउट सिंपल थिंग्स लाइक इमरजेंसी कॉल नंबर्स. कहाँ पर कॉल करना है अगर इमरजेंसी हुई, किस तरह से घर पर आना है, किन के साथ आना है, अकेले नहीं घूमना है. अगर बस पकड़ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो बी इन क्राउड्स, क्योंकि अकेले में कुछ लोग बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं या फिर चोट पहुँचा देते हैं. तो मेक श्योर यू डू दिस सेफ्टी टिप्स, सेफ्टी टॉक्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ताकि सभी लोग एक दूसरे को सेफ रख सकें. मिलते हैं अगले शनिवार को. तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, हैव अ ग्रेट वीक अहेड.

Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 AM.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
0: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: Nightfly.

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम हाँ।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, sirf Rova par.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तो आड़ा फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह का
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मीन्स मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywoods.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: Night Fly.

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है। Now showing in cinemas.
2: I am going to expose this fraud.
1: Distribution partner, Forum Films. Rated M.
3: Wow.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night Fly.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: डीजे वाले भाई साहब लगा दो कोई डुबचिक डुबचिक।

ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: Sunnyside Up.
1: आज की कहानी एक बेटी और एक पिता की कहानी है. पिता जो है इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो अस्पताल ले जाया गया उन्हें, एंड इलाज के लिए उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखा गया. और जब अस्पताल से उनकी छुट्टी हुई तो उनकी बेटी उनको लेकर घर जा रही थी, लेकिन गलती से उस लड़की ने गलत रास्ता ले लिया. जो फ्रीवे होता है उसके बजाय टोल रोड पे ये निकल पड़ी. हालांकि उस समय पर उसके पास एक भी पैसे नहीं थे. शी बेसिकली फॉरगॉट हर वॉलेट एट होम. और अब वो जब चेक पॉइंट पर पहुंची या जहां पर जाकर उसको पैसे जो है ये भरने थे, तब उसको एहसास हुआ कि उसके पास पैसे तो है नहीं. अब वहां से करे क्या, उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियों की कतार जो है ये लग गई. पीपल स्टार्टेड हॉन्किंग, यू नो, कुछ बुरा भला भी उनको कहने लगे. लेकिन उनके ठीक पीछे एक ट्रक ड्राइवर जो है ये था, जिसने देखा कि लड़की जो है ये पैनिक कर रही है कि अब ये क्या करेगी. ही बेसिकली गॉट ऑफ हिज ट्रक, वेंट, टैप्ड हिज ओन कार्ड, और वहाँ से वो उसके बाद लड़की को इशारा किया कि अब आप जा सकती हो. एंड ऑल ही सेड, डोंट स्ट्रेस लव, वी हैव ऑल हैड डेज लाइक दिस, जस्ट कीप मूविंग.
2: So being there for someone जिनसे आप related भी नहीं हो, and understanding someone's situation कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो pay ना कर पाए, and then stepping in to pay something. आजकल के ज़माने में किसी और के लिए पैसे देना is a big deal, even if you are paying as less as a dollar. लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते नहीं हैं. But if someone is doing that, it shows that of course there is humanity out there and people do understand किसी और की situation को. If they are going through something.
1: So, ऐसी और भी कहानियां हर दिन सनी साइड अप में आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस.

0: कहीं चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
2: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
6: You already share a group chat, now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay-monthly leader plan. New Spark Mobile customers only. T's and C's apply.
7: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: The breakfast show.

0: Global Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी से कहा है कि जब तक ईरान के साथ वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती वो यूएस फोर्सेस को वापस नहीं बुलाएंगे और जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर स्टॉकपाइल लाने के लिए ट्रूप्स भेजने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने सीएनएन को बताया कि वाशिंगटन के बदलते और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंस की वजह से दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत जो है ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। भारत में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सुवेंद्र अधिकारी के साथ एक अहम मीटिंग की है जिससे स्टेट के रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 61 रेलवे प्रोजेक्ट्स को जल्द ही अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बंगाल में 538 नए फ्लाई ओवर्स और अंडरपासेस बनाने के साथ साथ आने वाले दिनों में 102 अमृत भारत स्टेशंस को डेवलप करने का एक बड़ा ऐलान किया है। फिजी से आ रही खबरों में कहा जा रहा है कि किनोया में एक रेड के दौरान सकियासी रंड्रावू की मौत के बाद 12 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है जिसमें उनके कॉन्डक्ट और प्रोसेस फॉलो न करने की जांच होगी। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने रंड्रावू का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद और मौत की वजह आम होने के बाद ये प्रोसेस शुरू किया है। वर्ल्ड रग्बी सेवन सीरीज चैंपियनशिप को साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया है। सप्ताहांत बोडो सेवन्स खेला गया और टूर्नामेंट के दौरान मेंस कप फाइनल में फ्रांस की जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ 14-5 से हुई जबकि वुमेन्स कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 26-19 से हराया। फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप से पहले कई इंटरनेशनल फ्रेंडलीज भी खेले जा रहे हैं। आज सुबह साइप्रस की जीत लेचेटसन के खिलाफ 2-0 से हुई। अभी कोसोवो और एंडोरा निलोल से बराबर हैं। कुछ देर बाद क्रोएशिया स्लोवेनिया से खेलेगा। 7 बजे ग्रीस की भिड़ंत इटली से होगी और मोरक्को नॉर्वे से खेलेगा। 8 बजे इक्वाडोर और ग्वाटेमाला का मैच खेला जाएगा और आज दिन में 11 बजे कोलंबिया और जॉर्डन के बीच एक मैच होगा। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
2: सीधा अंदर आऊं
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है। अभी 29 मिनट हो रहे हैं 6:00। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने बातें की थी अबाउट द मूवी बंदर।
1: हाँ, बंदर। If you could just briefly remind me, इसमें क्या कहानी क्या है, then I'll be able to remember.
0: बॉबी ड्योल की ये आने वाली फिल्म थी और इसको लेकर काफी चर्चा जो है ये हुई थी। Now the film is released. अनुराग कश्यप ने ये फिल्म जो है ये बनाई है और उसके रिव्यूज जो अभी सामने आ रहे हैं, इनिशियल रिव्यूज। हालांकि शुरू शुरू में ये भी कहा जा रहा था अ कपल ऑफ डेज बैक कि यू नो इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं कि शायद इस फिल्म को जगह बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन ट्विटर या एक्स बेसिकली हैज गोन ब्लेज जिस तरह से रिव्यूज अभी तक आए हैं इस फिल्म के लिए। एंड लोगों ने कहा है कि अनुराग कश्यप इज बैक एंड ये एक ऐसी फिल्म है जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रो एंड हार्ड टू शेक ऑफ वंस यू हैव सीन इट। बॉबी देओल की ये जो क्राइम थ्रिलर है हैज बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया जब से ये थिएटर्स में आई है और फिल्म जो है ये TIFF 2025 में स्क्रीन हो चुकी थी और उसके बाद इसके थिएट्रिकल रिलीज को लेकर काफ़ी बातें हुई थी एंड कई लोगों ने जो अपने रिव्यूज दिए हैं अभी तक एंड किसी ने कहा आई गेव इट 4.5 स्टार्स एंड डिडंट होल्ड बैक एंड एक्सेप्शनल जस्ट वॉच एंड आई जेन्युइनली बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी फिल्म्स ऑफ आवर टाइम फ्रॉम हिंदी सिनेमा। The film addresses a subject that the society can no longer afford to ignore. It explores how gender-biased laws, their misuse and resulting legal battle can affect individuals, families, careers and even the justice system itself.
1: Very interesting.
0: Yeah. So, IMDb ki ek synopsis jo hai, Bobby Deol jo hai, Sameer Behra ka kirdar play kar rahe hain. Zyada story hum aapko nahi batayenge. And kya hota hai inke saath jab legal problems wagera jo hai, ye shuru hote hain. And uski ye kahani hai. To aap ko jab mauka mile, to ye film zarur dekhein and see how do you feel about it.
1: सो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है और आप देखकर इसे ज़रूर व्यू करते हुए अपनी राय जो है इस फिल्म के बारे में शेयर कर सकते हैं। बट देयर इज समथिंग, इफ़ यू हैव गॉट द एक्सेस सो यू हैव गॉट एन अकाउंट विद अमेज़न प्राइम वीडियोस तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको याद हो मैंने इस घंटे की शुरुआत में एक बात बोली थी कि आई डिड समथिंग विच आई वॉज नॉट सपोज टू डू एंड आई थिंक अब उसका असर पड़ रहा है, बट आई विल से इट वॉज टोटली बोथ इट। सो व्हाट आई मेंट बाय दैट वॉज कि By the fact कि जब हम सुबह का शो करते हैं तो हमें एक सर्टेन टाइम तक सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस टाइम का जब आप उस टाइम तक सोओगे नहीं तो अगली सुबह आपको नंबर वन उठने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी बिकॉज योर नींद विल नॉट बी कम्प्लीटेड। एंड दूसरी चीज इज कि यू फील दैट यू नो दैट वेट ऑन योर बॉडी एंड योर मेंटली बेसिकली अपने अपने दिमाग पर शरीर पर दोनों पर आपको फील होगा कि थकावट इतनी ज्यादा है। एंड आई नो आई एम सपोज टू गो टू बेड बाय अ सर्टेन टाइम ताकि अगली सुबह फ्रेश एकदम यू नो ऐसे जाकर प्रोग्राम जो है ये कर सकूं। बट लास्ट नाइट आई डिडंट डू दैट, आई डिडंट फॉलो दैट रूल जो मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए, विच इज बेसिकली नॉट वेक अप लेट स्पेशली इन अ संडे नाइट, क्योंकि मंडे मॉर्निंग बहुत स्ट्रेसफुल ऐसे होता है। So I woke up late. I mean, not woke up late. I was awake till late. I think 12:30 tak to I was awake. 12:30 tak. Because I was binge watching a show. And ye jo show hai, I came across this particular show through some reels. Maine kuch dekha and I liked. Ek 30 second ka reel mein maine jo bhi dekha mujhe pasand aaya and maine ise dhunda and then I went and watched it. So I think kareeban 6 episodes ka hai ye. And each episode is around 57 minutes ka, ek episode. Wow. So I binge-watched 4 episodes back-to-back.
0: Achha.
1: अब दो ही एपिसोड बाकी है मुझे देखने के लिए, बट कल जब 12:30 बज गए तो मैंने सोचा यार अब सोना पड़ेगा अदरवाइज सुबह मैं पागल हो जाऊंगी एंड आई हैड टू टेल माई सेल्फ टू गो टू बेड सो आई डोंट यू नो फेस द रेस्ट ऑफ इट इन द मॉर्निंग। एंड जब मैंने ये जो शो देखना शुरू किया मैंने 4 एपिसोड्स जो 57 मिनट्स का एक एपिसोड है, इट्स लाइक 4 आवर्स, और मैंने ये देखना बहुत लेट शुरू किया था, आई थिंक आई स्टार्टेड इट अराउंड 9 और समथिंग। तो मुझे इतना अच्छा लगा, आई रियली एन्जॉयड इट, एंड देन आई जस्ट कांट वेट टू गो बैक टू इट एंड कंप्लीट द फाइनल टू एपिसोड्स. तो आप भी जरूर जाकर देखिएगा अगर आपको टाइम मिले. एंड द शो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स बेसिकली अ वेब सीरीज और ये आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगा. एंड इट्स टाइटल्ड मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी.
0: अच्छा,
1: सो टाइटन घड़िया जो है ना उनके एग्जिस्टेंस की कहानी. हाउ डिड इट कम इन टू एग्जिस्टेंस. टाइटन वॉचेस उसे बनाया क्यों गया एट द फर्स्ट प्लेस एंड उसे बनाने के लिए what was the you know difficulty जो फेस की गई थी. सो बेसिकली इन अ मार्केट जहाँ पर स्मगलिंग और फॉरेन ब्रांड्स जो है ये डिटर्मिन कर रहे थे the fact की जो लोग हैं वो क्या पहनेंगे, तो वहीं पर there was this Indian guy जिनका नाम था जैक्सिस देसाई. अपनी टीम के साथ उन्होंने वर्ल्ड क्लास वॉच फ्रॉम स्क्रेच बनाने का सोचा क्योंकि मेड इन इंडिया वॉचेस उस टाइम पर बहुत कम थे. एंड इन्होंने जब ये सोचा तो उनका जो सफर उन्होंने शुरू किया इट वॉज बेसिकली फिल्ड विद रिजेक्शन, फिल्ड विद फेलियर, फिल्ड विद ग्लोबल ह्यूमिलिएशन. और फिर कैसे उन्होंने टाइटन को इन अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड जो है ये तब्दील किया. यू नो द माइनर डिटेल्स जो आपको इसमें देखने को मिलेगी इज सो इंटरेस्टिंग. एंड द फैक्ट कि जो स्टारकास्ट है ये इतनी ग्रैंड नहीं है बट देर सम अमेजिंग एक्टर्स जो इसका हिस्सा है. इट हेल्प्स यू or it forces you to watch this particular show again and again. Xerxes Desai ka kirdar play kiya hai Jim Sarb ne aur Nasiruddin Shah jo hai inhone JRD Tata ka role play kiya hai. So something really interesting, something that if you'd like to watch, if you want to dwell into history and enjoy existence of something ki itihas mein ye cheez aayi kahan se, agar wo cheeze aapko dekhna pasand hai, waisi kahani aapko dekhni pasand hai, then you should watch Made in India a Titan Story.
0: Okay, तो आप ट्राई आउट कर सकते हैं. और भी तमाम चीजें हो रही हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिसकी जानकारियां बारी बारी से हम पर आपको हम देते रहेंगे.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Join Skinny, get $30 happier.
6: Good morning. Currently 12, heading for a high of 18 this afternoon. We've got a crash blocking the right southbound lane between Silverdale and Albany on the northern. It is very heavy between Silverdale and Snow Planet. An hour and 2 minutes into the city. 25 from Constellation Drive. On the northwestern, half an hour from Massey. On the southern, it's 25 minutes from Monaco. The southwestern is free flowing.
5: Switch to Skinny and get $30 credit. Available on $27 plus plans. Terms apply.
7: Jen didn't think she needed a DVS system.
8: Oh, I've got insulation in that.
7: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
8: Ah, yeah.
7: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
10: Reliance Ventilation System.
11: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
10: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
11: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
10: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
12: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
13: The red hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
14: Beating pump prices is easier than ever for seniors, students, kids, community service card holders, and others. Auckland Transport has 7 different discounts to make getting around more affordable. See if you can save on travel by searching AT Fare Discounts.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 21 मिनट अभी रह गए हैं सात बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. सबसे पहले 4:30 बजे के वक्त ही मिस्टर माटा माटा का मैसेज है. राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे. आपको भी अ वेरी हैप्पी मंडे.
3: और इनके अलावा आज गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ ग्रेट डे मेंडी ने कहा है. थैंक यू सो मच मेंडी, आपके भी मैसेज के लिए आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको.
2: गुड मॉर्निंग विजय भाई एंड पूजा जी, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बोथ. अश्विन, आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं.
3: और अश्विन के अलावा आज बॉबी मान जी, आपका भी मैसेज आया है, सो शुक्रिया. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव एन ऑसम वीक अहेड, शिवाज ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपके भी मैसेज के लिए, हैव अ वंडरफुल डे.
2: गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट वीक. विनीता, आपको भी इस दिन की, इस हफ्ते की बहुत सारी शुभकामनाएं. आपके वक्त, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपके मैसेज के लिए भी थैंक यू सो मच. आपको हम कहना चाहेंगे जो मैसेजेस आपने भेजे हैं. आज 8th of June, अगर किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है, मेक श्योर मैसेजेस समय से पहले आज आप हमें भेजते हैं. 8th of June, वैसे बेस्ट फ्रेंड्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 8th of June को.
3: और क्या बात है भाई, वेरी नाइस. सो अगर आज के इस दिन जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड आपका कोई एक ऐसा फ्रेंडशिप है, यो बेस्ट फ्रेंड बेसिकली जो मोर देन 7 years से है आपके साथ, तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिए हमारे पास और हमें बताइए. 5599, एंड आई एम गोना रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 7 years, जिसके बारे में हम आपको राउंड थ्रोबैक जरूर बताएंगे. तो रिमेम्बर, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमने पूछा है, आज बेस्ट फ्रेंड्स डे मार्क किया जा रहा है, और अगर आपका लाइफ, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक फ्रेंड है, ऐसा कोई एक बेस्ट फ्रेंड है जिनके साथ आपका ये जो रिश्ता है, इट हैज बीन देयर सिंस द पास्ट 7 years या 7 years से ज्यादा, तो आप जरूर बताइए 5599 पर अपने नाम के साथ मैसेज करते हुए हमारे पास. यू कैन टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल, कि वो कैसे हैं या फिर उनका नाम क्या है. वी डू अ शाउट आउट फॉर देम एज वेल ऑन योर बिहाफ.
2: तो 5599 हमारा नंबर है जिस पर मैसेजेस आप अपने हमें भेज सकते हैं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Divine, सिर्फ रोवा पर.
1: Accurate traffic.
2: Kitchen Mania trade prices this month.
3: Good morning. It's a partly cloudy day with westerlies and a high of 18. And on the northern, we have massive delays. There is a crash blocking the right southbound lane at Dairy Flat, and it's taking around 30 minutes from Constellation Drive to the city, an hour and two from Silverdale. On the northwestern, it's half an hour from Massey. On the southern, 25 from Monaco. Southwestern free flowing, and the run to the airport 23 minutes.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and get trade prices. T's and C's apply.
4: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
5: Oh no, we'll be late.
6: We'll be all right. I'll call the AA.
7: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
8: Oh my, oh my. Great South Road, greater than ever.
9: South Auckland's buses just became a lot better.
8: Weymouth Road, way better buses.
9: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
8: Woody, no worries. MIT, A-OK.
9: Search AT Better South Auckland Buses for details.
8: Airport, got your transport.
9: Then turn up and go.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: Breakfast Catch-Up. Throwback.
13: समय की ओर देख ले, 11:30 रह गए हैं अभी 7 बजने में, और 11 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट होगा. आपने दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में पूछा था.
14: हाँ, जैसे कि आज आपने बताया कि आज
13: बेस्ट फ्रेंड्स डे
14: है. सॉरी, या आज बेस्ट फ्रेंड्स डे है, और उस मामले में मैंने ये पूछा कि ऐसा कोई एक दोस्त आपका जिनके साथ आपकी जो दोस्ती है ये करीबन 7 सालों से ज्यादा या 7 सालों तक की है, मतलब फॉर द पास्ट 7 ईयर्स या फिर मोर देन 7 ईयर्स से आप दोनों अगर यू नो फ्रेंड्स रह चुके हैं तो आप हमें जरूर बताइए. और फिर हमने ये भी कहा कि यू कैन सेंड डेडिकेशंस एज वेल, एंड वी डू लव टू डू अ शाउट आउट फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल. और मैंने स्पेसिफिकली 7 ईयर्स इसीलिए मेंशन किया बिकॉज इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग यू नो साइंटिफिक रूल है. और ये साइंटिफिक रूल ये है दैट 7 ईयर फ्रेंडशिप रूल बेसिकली जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी मार्क करती है वो है ये कि इफ अ पर्सन कैन हैव बेसिकली पर्सन कैन हैव मेनी फ्रेंड्स दे वांट इन अ लाइफ टाइम, लेकिन अगर किसी के साथ उनकी दोस्ती 7 सालों से चल रही है या 7 सालों से ज्यादा चल रही है देन उनके बारे में कहा जाता है इट्स मोर लाइकली दैट दे बिकम परमानेंट. द रीजन इज क्योंकि बाय दिस पीरियड योर फ्रेंडशिप हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस सच एज आप किसी नई जगह मूव हो गए, आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन कर ली, कोई नए रिश्ते में आप चले गए, पर्सनली यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, यू नो मैच्योरिटी आप में और आ गई है. एंड इफ योर फ्रेंडशिप कैन सर्वाइव ऑल दिस शिफ्ट्स एंड इट हैज प्रूवन कि आप बहुत स्ट्रांग मीनिंगफुल डीप रूटेड फ्रेंडशिप जो है ये शेयर कर रहे हैं. 7 ईयर थियरी इसीलिए है क्योंकि 7 सालों में ये मेजर चेंजेस हमारे लाइफ में हो जाते हैं. किसी भी लाइफ में अगर आप देखो तो मैक्स 7 ईयर्स में बहुत बड़ा बदलाव जो है, बड़े बड़े बदलाव इनफैक्ट हमारी लाइफ में आते हैं. और अगर आपकी दोस्ती उन बड़े बड़े बदलाव को जिनमें मूविंग टू अ न्यू प्लेस, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप बेसिकली जहां पर आपको निभानी पड़े, ऐसी भी चीज अगर सह लेना तो वो एक परमानेंट दोस्ती, एक लाइफ लॉन्ग दोस्ती जो है ये बन सकती है.
13: इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. वैसे मैसेज आया, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा. माय फ्रेंड एंड आई हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ओवर 21 ईयर्स सिंस वी वर इन हायर स्कूल. And we are very close, even though we live in different cities. Ash ne Papakura se ye message hamare paas bheja hai. Ash, thank you so much आपके मैसेज के लिए। आपका भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो 7 या 3 जो है उसके बारे में तो आपको पता चल चुका है। अब आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है किसी के साथ, ये आप हमें टेक्स्ट करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड क्या ये 7 या 3 आप पर भी अप्लाई होती है या नहीं?
14: हाँ, तो आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे कि हमने कहा, यू कैन टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि हम उनके लिए शाउट आउट भी कर सके। बाय द वे, बिफोर मूव ऑन, डू यू हैव एनी सच फ्रेंडशिप इन योर लाइफ जो 7 सालों से ज्यादा चली है?
13: आई डोंट नो, 7 सालों से ज्यादा, क्योंकि कभी दोस्ती को ऐसे टाइम फ्रेम में देखा नहीं ना।
14: दैट्स नॉट द थिंग, द थिंग इज कि इफ यू हैव अ फ्रेंड जिनको आप अपना दोस्त मानते हैं,
13: हाँ,
14: जो आपको अपना दोस्त मानते हैं,
13: हाँ, हाँ, हाँ,
14: और उनके साथ ये फ्रेंडशिप आपकी 7 सालों से ऊपर की हो गई है,
13: हाँ, हो गई।
14: हाँ, तो ऐसे दोस्त हैं आपके लाइफ,
13: हाँ,
14: में,
13: हो गए, हो गए।
14: That's a simple question, जिसका एक सिंपल सा आंसर है। So that means basically आपकी फ्रेंडशिप भी लाइफ लॉन्ग की हो सकती है।
13: Yes, 8 मिनट रह गए हैं 7 बजने में।

0: फर्स्ट मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
1: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
2: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं, ग्रेट मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ आऊँ।

0: डर कर।
1: Come on, Riya.
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है।
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: Wow.
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her.
0: तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it.

0: मॉर्निंग मैडनेस।
1: 3:30 हुए हैं 7:00। वेरी गुड मॉर्निंग। अगर कुछ देर से आप हमारे साथ शामिल हुए हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, मॉर्निंग मैडनेस अब शुरू हो रहा है ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर। परमा महाराज जी, आपका जो गुड मॉर्निंग मैसेज है ये भी आया था, थैंक यू सो मच। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
2: और मॉर्निंग मैडनेस में आप सभी का स्पेशल वेलकम वंस अगेन। रिमाइंडिंग यू ऑल कि इस घंटे आपको सबसे पहले तो हम बताएंगे आपके आज के इस दिन के बारे में, एज इन पर्सनली अगर आप अपने अपने हॉरोस्कोप्स में बहुत बिलीव करते हैं तो दिस इज समथिंग दैट विल हैपन फॉर यू इन अ वेरी शॉर्ट वाइल इसी घंटे। और उसके अलावा आपको वेरी हैप्पी बर्थडे भी हम विश करेंगे। सो अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है या फिर आपका बर्थडे है और समवन रियली वेरी क्लोज टू यू सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे, तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं। 5599 पर आप मैसेज कीजिए और हम आपको जरूर विश करेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: Oh, here are your Rashi vibes for today. सबसे पहले मेष यानी एरिस, बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, लेकिन कोई पुरानी बीमारी की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं. एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं. ये भी पॉसिबल है कि किसी के साथ कुछ कहा सुनी आज हो, तो जहां तक हो सके कोई रिस्क ना लें.
1: वृषणी टोरस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो वापस मिल सकते हैं आपको. बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, इनफेक्ट फायदा होगा आपको, और किस्मत भी आज आपके साथ है. कभी कभी ऐसा एक दिन होता है जहां पर कुछ गलत हो, तो हम कहते हैं ना कि यार किस्मत भी आज हमारे साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है. लेकिन टुडे थिंग्स विल बी डिफरेंट एंड यू फील दैट डेस्टिनी इज विद यू एट एवरी स्टेप.
0: मिथुन यानी जेमिनी, आज काफी सोशल वर्क करने के लिए आप इंस्पायर्ड रहेंगे, जिससे मान सम्मान मिलेगा और आज नए फ्रेंड्स आप बनाएंगे. हालांकि इमीडिएटली उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा. ऑफिस में आज कॉलीग्स आपको पूरा सपोर्ट देंगे.
1: करके ने कैंसर, आज आपके लिए कहा जा रहा है मानसिक शांति रहेगी, फायदे के बहुत से मौके आपके हाथ लगेंगे. समय बहुत अच्छा है, इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाइए. और अगर कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े कदम उठाने, आपको कुछ बदलाव आपको लाना है अपनी लाइफ में, तो आप जरूर ये कर सकते हैं.
0: सिंह यानी लियो, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें. बिजनेस ठीक ठाक चलेगा. लेन देन करते समय भी सावधान रहें और किसी दूसरे की बातों में आप बिल्कुल ना आए. अच्छी तरह से सोच समझ कर खुद ही डिसीशंस आपको लेने पड़ेंगे.
1: कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि पैसों के मामले में बहुत अच्छा दिन रहेगा. इनफैक्ट ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जहां पर दोनों ही ओर से पैसे आपके हाथ लगेंगे. आपके भाइयों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शुभ काम होगा जिसमें आप भाग लेंगे और बहुत अच्छा समय बीतेगा आपका.
0: तुला यानी लिब्रा, आपको भी पैसों का फायदा होगा और इंटरव्यूज आदि में सक्सेस हासिल करेंगे. आज सुख के साधन पर कुछ पैसे वगैरह जो है कि आप खर्च कर सकते हैं. एंड अगर कोई नई नौकरी हासिल करने की कोशिश में आप लगे हुए थे, तो ये भी आज सक्सेसफुल होगा आपके लिए.
1: वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है किसी बुजुर्ग के गाइडेंस की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आज बिजनेस में बहुत फायदा होगा आपको. और किसी शुभ काम में भाग लेने का भी मौका मिलेगा जिसकी वजह से आप जो भी चाहते हैं, मतलब खासतौर पर कोई सफलता जिसके पीछे आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो फाइनली आप हासिल कर सकते हैं.
0: धनु यानी सेजिटेरियस, अपनी वैल्यूबल चीजें संभाल कर रखें. दौड़ धूप कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी आज आपको, जिससे काफी टायर्ड आप महसूस करेंगे. बिजनेस ठीक ठाक ही चलेगा और ट्रेवल करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें.
1: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि आज नौकरी में आपकी तारीफ होगी, लोग आपको समझेंगे और पसंद करेंगे आपके काम करने के तरीके को. आज काफी खुश रहेंगे आप अपने दिन से, पूरे दिन से. इनफेक्ट जहां पर आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, जो कोशिशें आप कर रहे हैं उसमें आप सफलता जरूर हासिल करेंगे.
0: कुंभ यानी एक्वेरियस, अच्छी खबर मिलेगी, घर पर मेहमान आ सकते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस आज आपका काफी अच्छा रहेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिन बढ़िया है.
1: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा आपका. अगर इससे रिलेटेड किसी ट्रिप पर आप जाने वाले हैं तो स्ट्रेस फ्री होकर जाइए, बिकॉज दिस ट्रिप विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू. और कोई बहुत बड़ा एक यू नो सिचुएशन आप फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी समस्या थी, जिससे आज आपको छुटकारा मिलेगा और इसकी वजह से आप चैन की सांस लेंगे, राहत महसूस करेंगे एंड यूड फील लाइक कि ओके फाइनली आई एम आउट ऑफ इट.
0: So, ये रहे आज के आपके राशि वाइब्स. थोड़ी देर बाद सेलिब्रिटी अलार्म.
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox. Hum. With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis. With you. For you.
1: What kind of businesses run on business fibre? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on business fiber.
2: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
3: Oaklin, tayyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
4: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: Celebrity Alarm. Hit it.
10: अब वक्त हो चुका है आज का सेलिब्रिटी अलार्म. हम आपके लिए लेकर आए हैं. आप देखें आज आइडेंटिफाई कर पाते हैं सेलिब्रिटी को या नहीं.
11: और अगर आपने जैसे ही आवाज़ सुनते इनको पहचान लिया तो ये याद रखें, आपको बस BF लिखना है. उसके बाद में आपको लिखना है अपना नाम और भेज देना है जवाब के साथ हमारे पास ऑन 5599. सो BF योर नेम, आपका आंसर और 5599 पर आप इसे हमारे पास फटाफट भेज दीजिएगा.
10: तो लीजिए आज के सेलिब्रिटी.
12: मैं मैथ्स में बहुत ही सही था.
13: सही थे
12: अल्टीमेट. मैं नेशनल ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ.
13: क्या बात कर रहे हो.
12: मैंने जब कैट दिया था मेरे DI में 98.25% था बिना पढ़े.
13: वो
10: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी.
11: Honestly speaking, I think मैंने दोनों आवाजें पहचान ली है. बट आई नो कि आप बातें कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट वॉइस दैट एवरीवन हर्ड, या फिर ज्यादा जिनकी आवाज जो है आपने सुनी, बिकॉज द अदर वन वाज ओनली गिविंग एक्सप्रेशंस लाइक क्या बात कर रहे हो, वो ऐसा, वो वाली आवाज नहीं पहचानी है. बट आई थिंक आई नो बोथ. बट लेट्स सी कि मेरी तरह आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने या तो दोनों आवाजें पहचान ली बट जवाब आपको सिर्फ एक का देना है, और जो मेन आवाज है वो कितनी आसानी से लोगों ने पहचाना है.
10: तो एक बार फिर आप सुन ले कौन है इतने स्मार्ट मैथ्स में.
12: मैं मैथ्स में बहुत ही सही था.
13: सही थे
12: अल्टीमेट. मैं नेशनल ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ.
13: क्या बात कर रहे हो.
12: मैंने जब कैट दिया था मेरे DI में 98.25% था बिना पढ़े.
10: तो अब BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.
8: Hollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में हैवलॉक नॉर्थ के एक पार्क में 12 साल के एक बच्चे पर अटैक करने वाले एक सस्पिशियस व्यक्ति की तलाश में पुलिस लगी हुई है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जेम्स की ने बताया कि ये असोल्ट पिछले फ्राइडे को लगभग शाम 3 बजे के वक्त पार्क के बीएमएक्स एरिया में हुआ था, जहां एक अजनबी ने बच्चे को अप्रोच किया था। पुलिस के मुताबिक सस्पिशियस शख्स एक ग्रे रंग के निसान नवारा यूट चला रहा था, जिसमें रूफ रेक्स थे पर कैनोपी नहीं थी। हालांकि गाड़ी का नंबर प्लेट अभी तक पता नहीं चला है। वहीं हैवलॉक नॉर्थ में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 पुलिस कार्स को टक्कर मारी, जिसके बाद पुलिस ने 29 साल के एक व्यक्ति और 28 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। टायर स्पाइक होने के बाद भी गाड़ी से चिंगारियां और धुआं निकल रहा था, पर ड्राइवर ने पब्लिक की जान खतरे में डालकर हेस्टिंग्स और फ्लेक्समिया के रास्ते भागने की कोशिश की। फ्लेक्समिया एवेन्यू पर घेरे जाने के बाद आरोपी ने पुलिस की गाड़ियों को डैमेज किया और दोनों पकड़े गए। सुपर रग्बी कॉम्पिटिशन के सेमीफाइनल्स इस सप्ताह खेले जाएंगे। फ्राइडे को पहला सेमीफाइनल रात 7 बजे से खेला जाएगा, जिसमें चीफ्स क्रुसेडर्स को होस्ट करेगा। शनिवार को दूसरे सेमीफाइनल में हरिकन्स ब्लूज से खेलेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
4: Checked your KiwiSaver fees lately?
5: Good morning, cloudy patches. Currently 12, but we will get to 18 today. On the northern, it's taking just over an hour from Silverdale. An earlier crash has been cleared, but it's still quite heavy. 40 minutes from Constellation. On the northwestern, it's 40 from Massey. On the southern, it's 45 from Monaco. And on the southwestern, it's getting heavy at Lambie Drive northbound. The run to the airport, 25 minutes.
4: See what you could save with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
7: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store.
8: Bunnings Warehouse.
7: Lowest prices are just the beginning.
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB. Get one step ahead.
12: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari good brands me hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
1: Many many happy returns of the day. Aaj ka din aapko bahut bahut bar shubh aur mubarak ho. 8th of June, Hawa Khan ji. ऑटाहू में आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपकी उम्र दराजी की दुआएं मांग रहे हैं। हम सभी की ओर से भी ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आज आपके साथ नितेश, आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं सभी आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। राजेश मिस्त्री हैं, रोहित हैं, दिलीप हैं, इन सभी ने आज आपको याद किया है। हमारी ओर से भी ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको भी हम कहना चाहेंगे, याद रहे अपने बर्थडे और एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स आप भेज सकते हैं हमारे पास 5599 पर, और हर दिन आपकी सालगिरह की खुशियों में शामिल हम होते रहते हैं ओनली ऑन हम।
2: मॉर्निंग मैडनेस।
1: अभी देखिए 26 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में। और आज के सेलिब्रिटी अलार्म का क्या हुआ, कुछ लोगों ने सही, कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने गलत जवाब दिए हैं। लविका है माउंट ईडन से, साथ में विधि, थैंक यू सो मच। सोम है, कई लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा। रौनक है, नितेश, सृष्टि, जायबा है, आलोक है, विनील, मनुरेवस है, अरफाज, थैंक यू सो मच। प्रिया है, नरेंद्र कौर, ज्योतिका, आप सभी के मैसेजेस जो है ये हमारे पास आए, थैंक यू सो मच आपके जवाबों के लिए। और आज सेलिब्रिटी अलार्म में जिनकी आवाज़ हमने आपको सुनाई वो थे बादशाह। सो थैंक यू सो मच। कल एक और सेलिब्रिटी को आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एंड दिस टाइम अराउंड मॉर्निंग मैडनेस में आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम देने जा रहे हैं. FYI, आपको बता दें कि जो FIH हॉकी विमेन्स नेशंस कप है, इट्स कमिंग टू द नॉर्थ हार्बर 15 से लेकर 21st ऑफ जून तक. यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये होने वाला है और इसके तहत आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप भी, ये माफ कीजिए, हॉकी नेशंस कप जो ये होने वाला है और इसके तहत आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये दे सके. देर बी 8 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करने वाली, अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले, एंड ऑफकोर्स न्यूजीलैंड बींग वन ऑफ देम. तो वी आर हियर टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप इस बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट का हिस्सा बन सके और न्यूजीलैंड की टीम को, यानी कि वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन्स टीम को आप सपोर्ट कर सके इस बहुत ही अमेजिंग टूर्नामेंट में.
1: और अगर आप चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, टिकट्स जो हैं जल्द से जल्द आप ले लें, hockeynz.flicket.co.nz आप विजिट करें और वहां से टिकट्स आप ले सकते हैं एंड बी इन नॉर्थ हार्बर जहां पर जो मैचेस हैं ये खेले जाएंगे. और 15th ऑफ जून से टूर्नामेंट जो है ये शुरू हो जाएगा, FIH हॉकी विमेन्स नेशंस कप, और 21st ऑफ जून तक चलता रहेगा. So make sure we go out there and support the team.
0: Absolutely. और अगर आप भी अपना support, अपना love towards the team जो है ये show करना चाहते हैं, तो this is your opportunity because you have to be there for the team as well. Not just like in support while we are talking about this, but in support physically. And आपको ये opportunity हम जरूर दे रहे हैं कि आप कुछ amazing games जो है ने witness कर सके और इसके लिए आप passes जो है ये हमारे साथ to the games जरूर जीत सकते हैं. So you can be there to support the Vantage Black Sticks Women Team and be there for them in person. और इसके लिए आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, आप टिकट्स जो है अपने ये hockeynz.flicket.co.nz से तो ले ही सकते हैं, but on the other hand you can try your luck to win some double passes with us as well.
1: आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी, the first thing you do is आप हॉकी लिखें, अपना नाम लिखें और 5599 पर हमारे पास भेजें. हॉकी फॉलोड बाय योर नेम और उसे 5599 पर हमारे पास भेज दें एंड कीप लिस्टिंग टू हम, और डिटेल्स जो है ये हम आपको बारी बारी से देते रहेंगे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Close to 14 degrees temperature abhi Auckland mein feel kar rahe hain. Aaj ka high 18 degrees, overnight kam se kam 13 degrees hoga. Kuch badal chhaye rahenge. Sham ke waqt halki barish ho sakti hai. Sunset sham 5:12 par aaj hoga.
0: Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: You know, when we talk about Trend Petrol में कुछ trending चीजों के बारे में, then we talk about mostly things जो trend कर रहे हैं online. But कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग भी online trend करने लगते हैं. And be it for the right or the wrong reasons, they do trend online. But this time around, हम जिनके बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं, वो फिलहाल trend कर रही हैं बहुत ज़्यादा. You might have come across this particular situation somehow. But वो क्यों trend कर रही हैं? Personally, it's for a very wrong reason, I would say. लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन झूठ जो ये छिप नहीं सकता. एंड इट वन डे इट फाइनली कम्स आउट. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. अपेरेंटली शिल्पा शिंदे, आपको पता है शिल्पा शिंदे कौन है?
4: अरे हाँ, हाँ, हाँ,
3: हाँ. So, इनके बारे में सुना आपने?
4: हाँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कल.
3: दैट मींस दैट शी इज ट्रेंडिंग इफ यू हैव कम अक्रॉस समथिंग इन रिगार्ड्स विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो अपेरेंटली एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे जो है, उन्होंने इनफैक्ट रिवील किया इन एन इंटरव्यू कि जब वो भाभी जी घर पर है, ये एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन सीरीज है, जब ये कर रही थी तो शी हैड सम सिचुएशन गोइंग ऑन इन रिगार्ड्स विद पेमेंट. और उसको लेकर जब उन्होंने वो रिलीज करानी चाही तो वो सिचुएशन थोड़ा एस्केलेट जो ये हो रहा था. एंड टू गेट दैट डन फुहा, उन्होंने अपने खुद के प्रोड्यूसर के ऊपर फॉल्स sexual harassment allegations jo hai ye lagaye. And she had stated that she resorted to making the allegations kyunki unke paas koi aur option nahi tha, jiski jo basically unka jo contract se lekar jo dispute hai ye chal raha tha, us wajah se unhone aisa kiya. Now jaise unhone ye baat reveal ki to of course ek widespread criticism online unko mila, and it grew stronger and stronger, jahan par bahut se different logo ne apne apne reactions jo hai ye bhi darshaye hain ki it's not right. Be it what, कुछ भी हो, जो गलत है वो गलत है. अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज को लेकर प्रॉब्लम थी तो आप उस हिसाब से हैंडल करते, लेकिन किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो फेक केस जो है ये दर्ज करना या उनके ऊपर एलिगेशंस लगाना इज डेफिनेटली नॉट राइट. एंड यही बात जो है इनके बारे में सामने आई है, जहां पर आए दिन अब इस मामले से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज जो है ये चलती हो रही है. और इनफैक्ट एक और एक सिचुएशन अब ये सामने आ गई है. हिना खान जो कि इनकी को कंटेस्टेंट थी इन बिग बॉस, जब इन्होंने जिस पर्टिकुलर सीजन में पार्टिसिपेट किया था, एंड उस दौरान इनकी और हिना खान की बिल्कुल भी नहीं बनती थी. एंड इट्स नॉट दैट रीजन जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं, बट हिना खान अपेरेंटली वेन एंड टुक थिंग्स ऑन हर सोशल मीडिया, जहां पर उन्होंने अपना जो यू नो राय है ये व्यक्त किया कि व्हाट शिल्पा डिड वाज रॉन्ग, उनको ये नहीं करना चाहिए था. एंड स्पेशली किसी के भी ऊपर ऐसे आप अगर फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगा रहे हो, देन एक्चुअली जो महिलाएं जो ऐसे सिचुएशन से गुजरती हैं ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज इन अ सिचुएशन जहां पर वो सच भी बोल रही हैं तो लोग उनका विश्वास करना बंद कर देते बिकॉज ऑफ केसेस लाइक दिस. तो उसके बाद चलकर शिल्पा शिंदे ने भी इनके ऊपर कुछ बातें जो ये कहीं. आई डोंट रियली नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट हिना खान इज बैटलिंग थ्रू अ वेरी सीरियस हेल्थ सिचुएशन. उनको कैंसर है और उस वजह से वो अपनी ट्रीटमेंट्स भी करा रही हैं, एंड शी लॉस्ट हर डैड रिसेंटली एज वेल. तो शिल्पा शिंदे टुक अ जाइब ऑन दैट एज वेल कि आपको सिंपथी बटोरनी है तो सिंपथी के लिए आपके पास आपकी बीमारी है, आपके घर परिवार में जो डेथ्स हो रहे हैं वो है, आप उस पर सिंपथी बटोरो, मेरे ऊपर कमेंट मत करो. तो ऐसी ऐसी चीजें जो है भी इनके बीच में भी चल रही हैं. बट एज आई सेड कि आज के ट्रेंड पेट्रोल में जो शख्स ट्रेंड कर रही हैं, एवरी वन इज सेइंग दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन. शी इज बींग देयर इन पीपल्स फेस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस.
1: तो शिल्पा शिंदे, कोई और अपडेट मिलता है तो हम आपको जरूर देंगे.

0: 16 मिनट हो रहे हैं 8:00 द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है थोड़ी ही देर में. व्हाट्स योर टेक में आपसे हम जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू फील, जो भी आज का टॉपिक होगा उसके बारे में. मैं पढ़ रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने सोशल मीडिया पर जाकर कुछ शेयर किया है जिसके बारे में अब ग्लोबली काफ़ी बातें अभी फ़िलहाल हो रही हैं. एंड शी बेसिकली स्टेटेड जो चैलेंजेस, जो चुनौतियों का सामना हम करते हैं वाइल बिल्डिंग अ लाइफ अब्रॉड. तो ये ऑस्ट्रेलिया से गई, मूव हुई इंडिया वहाँ सेटल होने के लिए. और कई चीज़ें थी जिसके बारे में इनको पता नहीं थी, और जब जाकर वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो इन चीज़ों का सामना जो है ये किया. और उन्होंने शेयर किया, विजिटिंग अ कंट्री एंड मूविंग टू वन आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. उन्होंने कहा, आई विजिटेड इंडिया 5 times बिफोर आई मूव्ड. आई थॉट आई'ड बी ओके, बट वंस द हनीमून पीरियड वो ऑफ I realized I was here permanently and everything felt different. Unhone kaha ki my first Christmas in India was one of the hardest. I was creating new memories with my new family while grieving being so far from my own. Both things were true at the same time and nobody warns you about that. In 2022, I went back to Australia for the first time after 3.5 years. I expected it to feel like coming home. Instead, I felt like a guest. Everything had moved on while I was gone, and so had I. I realized there was Australia Amanda and there was India Amanda, and I didn't know how to be both. For a long time, I felt too Australian for India and not Australian enough for Australia. Like I didn't fully belong anywhere. If you ever felt that, you know how lonely it is. In 2024, I was in Australia for 2 months, and for the first time, I felt genuinely homesick for India. I remember people asking me if I missed India when I visited before. I'd say yes, but I wasn't really sure. This trip, I was sure. 7 years, I have stopped trying to choose. There's a version of me that exists in both countries, and that's okay. A lot of people didn't think I'd last the first year. Some of them are not in my life anymore, and I'm still here. So if you are in the middle of this, I see you. The loneliness, the in-between feeling between grief of who you were before you moved, it doesn't go away completely, but it does get quieter and you get stronger. ये उन्होंने जाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. और उन्होंने कहा कि कहीं घूमने जाना और कहीं मूव हो जाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. लगता था कि ठीक होगा, लेकिन शुरुआती दौर जो है बहुत कठिन था. जब आप कहीं मूव हो जाते हैं तो आप अपने होम कंट्री में मेहमान बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें आपके लिए नहीं रुकती. तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानना चाहेंगे कि व्हाट्स योर टेक, बस थोड़ी ही देर में.
1: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
2: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन.
3: ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਏਰੀਏ ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ.

0: Streaming on Rover.
1: When your car starts making a funny noise, bringing it into Midas stops your mind spinning. With thoughts like, should you just ignore it? Pray? Ask your sister's husband's mate's cousin Greg to look at it? Hang around Henderson with a hood up, hoping a friendly Brogan will offer advice? Or hope your local mechanic doesn't find extra stuff to fix? Which brings us back to praying. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prizes. Midas, for peace of mind motoring.
2: True Midas.
3: When you're in the loop with ANZ and you spend on a new lippy,
4: fabulous.
3: Money loops back.
4: Fabulous.
3: Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
5: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18, T's and C's apply.
6: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
7: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz.
9: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a wee bit kid?
10: Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: 22 minutes after 8 o'clock on The Breakfast Show with Vijay and Pooja. And you know that already 8:22 ho chuka hai. Time kuch kam hi hoga aaj hamare paas. Isiliye topic humne aapko pehle hi bata diya. Hopefully you've got something to share. You know, kahin move hona aur kahin ghoomne jana. And jo challenges hum face karte hain while building a life abroad. वो क्या होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है और जब जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं तो इसका एहसास होता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है, ख़ासतौर पर जब नए हम होते हैं किसी एक कंट्री में, तो ना उस कंट्री के होते हैं ना फिर अपने होम कंट्री के हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नया होता है और बैक होम कंट्री जो है वक्त के साथ आगे बढ़ती जाती है. तो इस पर आपकी राय, आपने क्या कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जब आप मूव हुए अपनी होम कंट्री से यहाँ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से जब वापस अपने घर घूमने के लिए पहली बार गए, कितने दिनों बाद आप गए और क्या आपने फील किया? वे यू एबल टू यू नो, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, अपनापन का जो एहसास होता है, क्या आपने उसी तरह से महसूस किया जैसा आप पहले महसूस करते थे जब आप वहाँ पर रहते थे? ये हम आज आपसे जानना चाहते हैं. व्हाट्स योर टेक? 0800 004866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है ये आप बता सकते हैं, जानना चाहेंगे आपके बारे में. और किसी ने जाकर कहा कि This is so insightful. Amanda ने जो कुछ भी शेयर किया, और उसके बाद सिर्फ इंडियन ही नहीं, Amanda herself ये एक ऑस्ट्रेलियन है, और अक्सर हम बातें करते हैं अबाउट अस इंडियंस मूविंग आउट ऑफ आवर रिस्पेक्टिव होम कंट्रीज इनटू न्यूजीलैंड, एक नए कंट्री में, एक नए कल्चर में. यहाँ पर एक पर्सन है जो मूव हुई टू इंडिया और किस तरह से उनका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो उसको लेकर चैलेंजेस का सामना जो है ये कर रही थी. और कई लोगों ने, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलियंस बल्कि दुनिया भर में जो माइग्रेंट कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इससे रिलेट किया और कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। और किसी ने और ने कहा कि आई एम अ ब्राज़ीलियन एंड आई फील अ बिट लॉस्ट जहाँ पर ये मूव हुए हैं। तो अगर आपके पास भी कोई राय है तो आप ज़रूर हमारे पास हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉल करना है तो जल्दी से, आपके पास टाइम बहुत कम है, लगभग 2 मिनटों का वक्त ही है, तो बेसिकली एक ही कॉल हम शायद ले पाएँ आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए। और चाहे तो आप 5599 पर अपने जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं ये भी हमारे पास भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन द टॉपिक द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हाउ थिंग्स चेंज व्हेन यू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, नई कंट्री में एडजस्ट करना और जब वापस अपने घर जाते हैं या अपनी कंट्री में जाते हैं जहाँ से हम आए थे, सो क्या डू यू रियली फील दैट यू बिलोंग देयर, या फिर आप वहाँ जाकर एक मेहमान सा ही फील करते हैं। ऑब्वियसली अपने घर पर जब आप होते हैं तो अपनेपन का एहसास होता है, बट इन अ ब्रॉडर सेंस कंट्री को अगर आप देखें, डू यू स्टिल हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम यहाँ के नहीं हैं, दिस इज़ नॉट मी, या मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता हूँ। ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी राय डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हमने कहा, अमेंडा ने कहा, विजिटिंग अ कंट्री एंड मूविंग टू वन आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने कहा कि मूव होने से पहले वो 5 बार इंडिया गई थी और उनको लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, अच्छा होगा, एंड बट जब जब शुरू में कहीं आप जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है नई जगह आए, और उसको हनीमून पीरियड जो कहते हैं, जब वो ख़त्म होता है तब द रियलिटी हिट्स यू। गुड मॉर्निंग भूपिंदर, कैसे हो?
0: जी विजय भाई ठीक हूँ, आप कैसे हो?
13: अच्छा हूँ जी,
0: ठीक है जी, ठीक चाहिए। आज का टॉपिक आपका मैंने सुना, बड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ
13: जी।
0: तो ऐसा था कि 2000 लाइक हम जो माइग्रेट हैं दो ना, लाइक दो एक नाव में सवार होते हैं, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, लाइक तो मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि 2012 में मैं यहाँ आया था और उसके बाद 3 साल बाद इंडिया वापस गया, और उसके बाद हम यहाँ रेजिडेंस नहीं थे तब, तो अभी प्रोसेस चल रहा था। तो वहाँ इंडिया जाने के बाद जब मैं वापस गया तो बैंक वगैरह गया, उन मेरा जो वहाँ का आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, तो सारा उन्होंने कट कर दिया। वो कह रहे हैं कि आप तो 1 साल के, उनका प्रोसीजर ये है कि 1 साल के से बाहर रहते हो तो वो आपका सारा कुछ हो जाता है, वो आप NRI गिने जाते हो। और यहाँ पर हम जो चल रहा है, जब तक PR नहीं होते तब तक तो हम चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, काफी लोग हैं कि 10 साल भी लगते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप इंडियन हो, लाइक आप दूसरी कंट्री से हो, तो वो करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया वाले भी 1 साल के बाद हमें बाहर निकाल देते हैं, यहाँ वाले भी नहीं करते, तो कितना मुश्किल होता है उन लोगों को जो इस प्रॉब्लम से ऐसे होते हैं, जो इससे गुजरते हैं। तो ये इंडिया वालों को भी चाहिए, लाइक बैंक में जाओ, बैंक वाले कहते हैं कि आपका तो 1 साल से एंट्री नहीं है, आपका वो हमने स्टॉप कर दिया है, वो आधार कार्ड के लिए जाओ वो कह देते हैं, किसी पास किसी के वोटर का आईडी जो होता है वो कर दो, सब कुछ कट कर देते हैं। इवन कि उनको भी ये भी नहीं पता होता है कि ये इंडिया लाइक वहां पर रेजिडेंस है या उन्होंने परमानेंट वहां रहना है या कुछ रहना है, लाइक ये प्रोसेस अलग से है कि वो दोबारा उसको रिन्यू करवाते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये है लाइक इंडिया और यहाँ रहने का होता है, और यहाँ तक आपको पता ही है कि तब तक नहीं, हम न्यूजीलैंड नहीं कहलाते जब तक PR नहीं है, नहीं तो वैसे तो हम माइग्रेट ही कहलाएंगे ना
13: जी।
0: ये एक्सपीरियंस है।
13: थैंक यू भूपिंदर, थैंक यू सो मच, अच्छा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन आपका रहा। एंड किसी ने मैसेज किया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स स्टिल फील लाइक होम, दे क्रिएट दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, द कंट्री ऑफ कोर्स चेंजेस। तो आपकी जो राय है वो भी आप 5599 पर अब टेक्स्ट कर सकते हैं।
10: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
12: मैं लाऊं अपना A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

अंजनेश मेलबर्न से आपका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच भाई। और आपने कहा है विद माय एक्सपीरियंस इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन फॉरेन कंट्री, इट्स गुड टू हैव अ स्टेबल जॉब एंड सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। किसी और ने मैसेज किया है, इट डेफिनेटली डज फील लाइक लिविंग बिटवीन टू रियलिटीज। सो थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। ब्रेकफास्ट शो

0: Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania trade prices this month. Good morning. Cloudy and windy at times today with a high of 18. On the northern, it's heavy from Silverdale, 57 minutes to the city, 35 from Constellation. On the northwestern, it's 40 from Massey, heavy from Rosebank to St Luke's. On the southern, it's 48 minutes from Monaco, crawling between Highbrook Drive and Green Lane. The southwestern is heavy at Cavendish and the run to the airport, 25.
4: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and get trade prices. T's and C's apply.
5: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
6: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
7: You've known us as Fujitsu. We're now General. We've changed our name, but not who we are. Stay warm this winter with this great offer. Right now, when you purchase an eligible General Air Stage heat pump, you'll receive up to $500 cash back. Come home to comfort. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
8: Get a General.
9: Purchase eligible model by 31 July 26. Claim by 31 August 26. Retain receipts. T's and C's and exclusions apply. See fujitsugeneral.co.nz/promotions.
10: Wormsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
11: Trade Depot launches new products with massive deals this week only. Washing machines, $249. Fridge freezers, $279. Chest freezers, $199. Dishwashers, $289. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
0: TradeDepot.co.nz.
12: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
14: The Rush Hour on the Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एंड इस घंटे मेरे हाथ एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही शॉकिंग जो स्टोरी है ये लगी है एंड इसके बारे में तो बातें करना बनता है बिकॉज आई सी सो मेनी पीपल विद दिस थिंग इन देयर हैंड विच इज बेसिकली जहां भी ये जाते हैं ये इसे कैरी करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन एवरी डे बेसिस इन फैक्ट एंड दैट इज अ वाटर बॉटल आपके पास भी है एक वाटर बॉटल
15: हाँ हाँ बिल्कुल है बिल्कुल
14: तो जो रीयूजेबल वाटर बॉटल के बारे में बातें कर रही हूँ विच इज बेसिकली यू हैव गॉट समथिंग दैट यू यूज ऑन एवरी डे बेसिस और इसमें आप अपना जो वाटर ये फिल इन करते हैं देन से आप रिंस करते हैं देन यू फिल द वाटर अगेन एंड यूज इट सो इफ यू कैरी अ वाटर बॉटल एवरीवेयर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है दैट यू नीड टू नो दिस एक इमोशनल सपोर्ट होता है आपका वाटर बॉटल इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड इट्स बिकम अ वेरी वेरी पॉपुलर थिंग एज वेल जहाँ पर स्टैनली कप्स वगैरह भी लोग कैरी करते हैं सो इफ यू आर समवन हु कॉन्स्टेंटली ड्रिंक्स फ्रॉम योर रीयूजेबल वाटर बॉटल्स यू कैरी योर वाटर बॉटल एवरीवेयर एंड इट नॉट जस्ट एडल्ट्स बच्चे भी अपने वाटर बॉटल्स जो है ये स्कूल्स लेकर जाते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं यू नीड टू नो कि आपके वाटर बॉटल में एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बिकॉज इट कंटेन्स मोर बैक्टीरिया देन यू इनफेक्ट रियलाइज और ये एक्सपर्ट्स का कहना है आप शायद इस बात का एहसास ना कर पाए कि उसमें कितना बैक्टीरिया है बट देर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग देर इज अ लॉट गोइंग ऑन एंड यू हैव नो आइडिया सो अगर आपसे ये बोला जाए कि कैन बैक्टीरिया ग्रो इन वाटर बॉटल्स तो इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर वुड बी येस डॉक्टर ब्रूनो सिल्वेस्टर लोब्स इनका नाम है और ये सीनियर लेक्चरर है माइक्रोबायोलॉजी एट टीसाइड यूनिवर्सिटी के इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों रीयूजेबल बॉटल्स कैन बिकम द परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो वाटर बॉटल्स में ग्रो होता है इट्स ड्यू टू द मॉइस्चर वॉर्म्थ और न्यूट्रिएंट्स जो आपके सलाइवा से उनको मिलता है जब यू नो जो ड्रिंकिंग के बाद आप जो रेसिड्यू छोड़ते हैं उससे एंड दे फॉर्म बायोफिल्म्स एक स्लाइमी लेयर जो बनता है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया सच एज जो माइक्रोबाइब्स माइक्रोब्स होते हैं जो बैक्टीरिया फॉर्म करता है एंड ये स्टिक हो जाता है टू ईच अदर ऑन द सर्फेस स्पेशली अगर आप अपना बॉटल रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं. द रिम एंड द माउथ पीस जो है ये एक ऐसा एरिया है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा होता है ड्यू टू फ्रिक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द माउथ और जो बाकी पर्टिकुलर जो इलाकों के मिलान में, जैसे कि जो स्ट्रोज हो गए, कैप्स हो गए, उनके मिलान में, क्योंकि यहाँ पे भी मॉइस्चर ट्रैप होता है, बैक्टीरिया फॉर्म होता है, लेकिन जितना ज्यादा जिस पर्टिकुलर जगह से आप पीते हैं पानी, उतना बैक्टीरिया जहाँ पे फॉर्म होता है उतना शायद बॉटल के किसी और हिस्से में नहीं होता है. एंड डू यू स्टिल नीड टू वॉश योर बॉटल इफ यू ओनली पुट वॉटर इन इट? तो 100% आपको अपना बॉटल वॉश करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड यू नीड टू बी यू नो श्योर कि आप उसके हर एक कोने को स्क्रब कर रहे हैं, और स्क्रब करने के बाद विद अ नाइस हेल्थी सेफ डिटर्जेंट आप उसको स्क्रब करने के बाद उसे अच्छी तरह से रिंस कर रहे हैं, और क्लीन इट विद हॉट वाटर एज वेल. अगर आपका हॉट वाटर बॉटल जो है आपका, जो ये हॉट वाटर रेजिस्टेंट है, और उसे आप अच्छे से क्लीन करने के बाद साफ पानी जो है भरकर उसे आप पिए, ना कि सिर्फ उसे पानी डालकर टैप के नीचे रनिंग वाटर के नीचे रिंस करते हुए एंड देन यू पुट सम वो नाइस क्लीन वाटर इन इट, बिकॉज इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस टू इट. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू ड्रिंक आउट ऑफ योर वाटर बॉटल, आप अच्छे से सोच ले, हैव यू क्लीन योर वाटर बॉटल प्रॉपरली?
2: और थरा क्लीनिंग जो है इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women. Accurate traffic.
1: 15% off airport parking.
2: Good morning. It's partly cloudy with westerlies and a high of 18. And an earlier train fault is causing a few delays on the eastern and southern lines this morning. On the northern, it's 29 minutes from Constellation Drive, 47 from Silverdale, the northwestern 40 from Massey. On the southern, it's 43 from Monaco, heavy between Highbrook Drive and Green Lane. And the southwestern is heavy at Cavendish Drive.
1: 15% off Auckland airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
3: Hi, Stephen Fleming here. I used to be a captain, but most people know me as the Fujitsu guy. We're now General. We've changed our name, but not who we are. You can expect the same trusted quality and service that has made us New Zealand's favourite air. So, there you have it. Other than our name, nothing's changed. Not even me. Except now I'm the General guy. Come home to comfort. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
4: Get a General.
5: Winter's here, and so much to do at home. Fix the leak, clear the gutters, service the heat pump. When the to-do list calls, AA Home can help tackle all those winter jobs. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
6: Oh no, we'll be late.
7: We'll be right. I'll call the AA.
8: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं रिश्तों को और करीब लाएं कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स
10: The show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
11: थोड़ी देर बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे और आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो एक और बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है क्योंकि आपको तो पता है द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड 25th ऑफ जुलाई को द ट्रस्ट अरीना में इनका परफॉर्मेंस होने जा रहा है प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस टिकट्स dryticketsdotcom पर अवेलेबल हैं आपके लिए और आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपको एक डबल पास जीतने वाले ड्रो में शामिल होने का मौका हम देने वाले हैं सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड
12: Absolutely. Keep listening क्योंकि जैसे ये मौका आपको मिले मेक द मोस्ट ऑफ इट और आपको करना क्या है वो हम आपको अभी नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद जो है जरूर बताएंगे तो इसके लिए आपको बस हमारे साथ ही बने रहना है एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड अभी थोड़ी देर पहले हमने बातें की थी अबाउट क्लीनिंग योर यू नो रीयूजेबल वाटर बॉटल्स तो किसी ने मैसेज करके ये पूछा है कि हमें कितने दिन पर ये वॉश करना चाहिए वेरी सिंपल आपको बता दें अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल And of course, according to Dr. Lopez, जिन्होंने ये पूरी की पूरी रिसर्च जो है ये पब्लिश की है आपको अपना वाटर बॉटल एवरी 2 to 3 days पर थरली वॉश करना चाहिए
11: दो तीन दिनों पर सो रिमेम्बर दैट न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
1: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
2: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
3: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 9 बज रहे हैं।
4: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
5: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. There's relief for Wellington train that crashed into a concrete block, stopped when it did. 6 people were injured and there are investigations underway after the incident on the Johnsonville line. Councillor Diane Calvert says the front was crumpled and doors off.
6: If it had carried on from what I could see, the projection would have been it would have come off the bank and then it would have rolled down the bank and into some houses.
5: There are delays on State Highway 3 in Waikato after a serious crash. It happened in Rukuhia at the intersection of Rains and Ohopo Roads. Traffic management is in place. There is backing here for a World Health Organization call to ban vape flavours. Kia Manawanui Trust says they're undermining efforts to protect young people from addiction and disease. They say while there are some flavour restrictions in New Zealand, it doesn't go far enough. President Trump has angrily stormed out of an interview, telling the female journalist, "Thank you, darling," as he left. Kristen Welker from Meet the Press had challenged his claims, especially around election fraud.
7: I've sat I travel all the way to Wisconsin.
8: On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press.
5: To sport, where Tony Brown signed on as an All Blacks assistant coach on a 2-year deal from 2028. He's sticking with the Springboks for next year's World Cup. To rugby league with Machinery House, Tigers coach Benji Marshall's embarrassed after losing 68-0 to the Panthers in the NRL.
9: I don't usually apologise to our fans and members, but that performance was just unacceptable.
5: And Black Ferns 7 star Georgia Miller has been crowned Women's 7s Player of the Year for a second time in a row.
4: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi brand nahi hai.
4: Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: 15.2 degrees ho chuka hai temperature, aaj ka high 18, overnight kam se kam 13 degrees rahega, kuch badal chhaye rahenge, sham ke waqt halki barish ka anuman bhi hai, sunset aaj sham 5:12 par hoga.
4: Breakfast show with Vijay and Pooja,
11: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the Fortune.
4: What's going on? Kya bakte ho?
12: Are kehna kya chahte ho?
3: ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो सुनने के बाद हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई क्यों, क्या ऐसा क्या था, ये ऐसा कर गुजरते हैं लोग। तो ब्राज़ील के सेंटा कैटरीना में पुलिस को एक मामले की जानकारी जो है ये दी गई है, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिज़ार आइडेंटिटी फ्रॉड केसेस, जहां पर 37 ईयर ओल्ड एक महिला थी, इनको डिस्कवर किया गया इम्पर्सोनेटिंग अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल।
13: आई एम शुक, क्योंकि दिस इज द सेम स्टोरी आई वाज गोना टॉक अबाउट टुडे। इन क्या बकते हो, एंड आई नो कि हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग रियली शॉकिंग। सो अपेरेंटली ये कहानी जो है ये 37 ईयर ओल्ड महिला की ये है कि इन्होंने एक अनसस्पेक्टिंग कपल को खुद को अडॉप्ट करने के लिए यू नो ऐसे मना लिया कि वो 37 ईयर ओल्ड नहीं है, शी इज़ अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल, और करीबन 14 महीनों के लिए द अनसस्पेक्टिंग कपल, बेसिकली मोर देन ईयर, इन्होंने इनको अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट करके रखा था। एंड टू मेंटेन हर डिसेप्शन, इन्होंने बेबी बॉटल्स, डमीज और कम्फर्ट ब्लैंकेट जैसी चीज़ें जो है ये इस्तेमाल की, वाइल क्लेमिंग दैट कि इनका जो मेडिकल कंडीशन है लाइक ऑटिज्म, इसके दौरान जब इनको कंफर्ट की जरूरत होती है तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्ड हर। And this is how she was able to explain her adult appearance. Lekin jo age claim kiya ja raha tha of 12 years, ye wo us par maintain kar rahi thi.
3: Yeah, and Chanbin se ye bhi pata chala that she basically was a repeat offender jinhone pehle bhi is tarah ke kaam jo hai ye kiye the. And uske baad police ne inko ek bar phir ab arrest kiya hai. तो ऐसे भी चीजें लोग इस दुनिया में कर गुजरते हैं. थोड़ी देर बाद एक बहुत ही स्पेशल मुलाकात भी होने वाली है.

0: anywhere you get your podcast.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: At Woolworths, we go to great lengths to ensure only the finest quality meat makes the cut. Like our free-farmed pork leg or shoulder roast, bone-in, just $8.99 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
3: Walmsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council to Ararata Creek.
4: Trade Depot launches new products with massive deals this week only. Soundbar with Bluetooth, $99. Bar fridge, just $99. Corded steam mop, just $99. Pizza oven, just $99. Save hundreds on small appliances. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online. TradeDepot.co.nz.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
7: क्यों? क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. That's 800-564-424.

0: सो द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और इधर अभी व्हाट्स गोइंग ऑन जबकि आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो थोड़ी देर बाद आपके साथ आज का डेली राउंड अप ये भी शेयर करेंगे, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, खबरों के मामले में क्या कुछ चीजें जो है ये हो रही हैं, एंड थिंग्स दैट यू माइट एक्चुअली हैव मिस्ड आउट ऑन, तो इस पर भी कुछ बातें जो है ये हम आपके साथ जरूर करेंगे. बट फिलहाल के लिए चलिए आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और भी ऐसी खबरें जो आप जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज समथिंग दैट्स हैपनिंग. नाउ आई हैड कम अक्रॉस दिस पर्सनली, जहां पर समवन आई नो उनके कमरे में ये मिला था. हाँ. और उसके बाद उन्होंने कोशिश की उसको अपने कमरे से बाहर भगाने की, तो ऐसा लगा कि अच्छा भाग गया है, सब कुछ नॉर्मल है. पर थोड़े दिनों बाद इस मेहमान की वापसी इनके कमरे में हुई, और फिर उसके बाद कि उसी घर में किसी और कमरे में भी इस मेहमान की वापसी जो है ये हुई. एंड दिस थिंग एक्चुअली बिकेम अ प्रॉब्लम अनलेस एंड अंटिल इनको एक पर्टिकुलर तरीके से हैंडल किया गया. नाउ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, एनी आइडिया, डू यू थिंक यू कैन फिगर आउट व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट?
1: नथिंग एट ऑल.
0: Nothing at all. Okay. So this is something I'm talking about, जो एक problem बन चुका है Auckland में. I don't know how many of you have experienced it, and it is called the rat problem. Rats in Auckland.
1: अच्छा.
0: They're growing, not just in size, literally like growing.
1: Numbers
0: में. But in numbers too. Yes. So अगर आपके आसपास or you know you've seen or you've heard from friends or family members कि चूहे जो है ये आपको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा दिख रहे, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैट्स एंड माउस ना.
1: रैट्स एंड माउस, यस यस,
0: दोनों में डिफरेंस है.
1: क्या डिफरेंस है?
0: एलिगेटर और उसमें होता है
1: क्रोकोडाइल.
0: क्रोकोडाइल में या माउस बेसिकली थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और रैट्स उनसे थोड़े बड़े होते हैं साइज में.
1: अच्छा.
0: या सो इफ यू सी अ रैट अराउंड इट विल एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ शिवर्स इन योर बॉडी, बिकॉज मेरे को तो होता है इनको देखकर, पता नहीं क्यों, बट दिस इज समथिंग विच हैज बिकम अ प्रॉब्लम. एंड आई थिंक एक स्टोरी जो है ये अभी हाल फिलहाल सामने आई है, एंड दिस इज बेसिकली फ्रॉम ऑकलैंड के या न्यूजीलैंड के किसी एक जाने माने शख्सियत जो है इनकी ओर से, फॉर्मर रियल हाउस वाइफ ऑफ ऑकलैंड की जो स्टार है, इन्होंने क्लेम किया है दैट जो रेट प्रॉब्लम बन रहा है, जो बहुत से अप मार्केट सबर्ब्स में भी एक यू नो रिपोर्ट किया जा रहा है कि रेट्स की तादाद जो है ये ऑकलैंड में बढ़ रही है. रेसिडेंस इन पॉन्सनबी, ग्रे लिन, वेस्टमिया, इन्होंने इनफेक्ट रिपोर्ट किया है अ शार्प इंक्रीज इन रेट नंबर्स रिसेंट वीक्स में, और सभी अपने अपने कॉन्सर्न्स शेयर कर रहे हैं कि ऐसे दिख रहे हैं आस पास घूमते फिरते हुए, ऐसा लग रहा है दे हैविंग अ गाला टाइम, एंजॉयिंग देयर टाइम. सो हाई प्रोफाइल जो ऑकलैंड न्यूजीलैंड कैट फाउंडेशन की फाउंडर है एन बेटली बर्टन इनका नाम है, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि आपके इस प्रॉब्लम का एकमात्र सलूशन है
1: क्या?
0: बिल्लियां.
1: ओके.
0: रेट्स को भगाने के लिए आपके लिए जो एकमात्र सलूशन जो काम में आ सकता है इज कैट्स. कैट्स एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम का. एंड शी आर्ग्यूज दैट फ्री रोमिंग एंड स्ट्रे कैट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल्स एज नेचुरल प्रेडेटर्स, और वो सजेस्ट करते हैं दैट शुड बी अलाउड टू हेल्प मैनेज रोडेंट पॉपुलेशंस इन ऑकलैंड. इनका ये कहना है कि मैनी लार्ज इंटरनेशनल सिटीज एक्चुअली रिलाई ऑन कैट्स एज पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम, ताकि वो रेड्स के नंबर्स को कम कर सके.
1: अभी यू नो आपने रेड्स के बारे में बातें शुरू की तो एक मैसेज आया है. इन्होंने कहा कि इनका नाम राजू है और ये टैलेंटेड है, ये रेट्स को रेट्स से बातें करके उनको बता सकते हैं कि आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप जाओ.
0: रियली?
1: हाँ. और चूहे चले
0: रहे. वो एक बचपन में कहानी सुनी थी हमने, याद है, जो एक बांसुरी वाला था.
1: मुझे नहीं पता भाई आपने कौन सी कहानी सुनी.
0: आपने भी सुनी होगी, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोरी.
1: नहीं, मुझे तो आज एक ही कहानी पता चली कि राजू ये चूहों से बात कर सकता है.
0: होते हैं कुछ लोगों में बहुत से टैलेंट, एंड आई एम बीइंग वेरी सीरियस, आई एम नॉट, मैं राजू का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, आई एम सेइंग कि सच में कुछ लोगों में ऐसा टैलेंट होता है. बट एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि गांव में यही चूहों की प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक बांसुरी वाला था जिसने एक क्लेम किया कि वो जो अपनी बांसुरी बजाएंगे तो जो चूहे हैं जो रेड्स हैं उनको फॉलो करके शहर से बाहर, उस गांव से बाहर चले जाएंगे. एंड उस बांसुरी वाले को बुलाया गया, बट उन्होंने कुछ शर्त वगैरह रखी थी गाँव वालों के साथ. व्हेन द गाँव वाला एक्चुअली डिडंट मीट द शर्त, तो बाद में उन्होंने बांसुरी बजाकर वापस से चूहों को गाँव में बुलाया था. ऐसी कुछ एक कहानी थी, आई रिमेम्बर, बट आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर द एग्जैक्ट
1: स्टोरी,
0: एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द स्टोरी. या
1: तो मैं भी, राजू भी शायद बांसुरी बजाता होगा.
0: Never know. But Auckland Council का कहना है, it has not recorded a significant rise in rodent activity. उन्होंने कुछ sites monitor किए हैं, pest control companies जो है वो भी different picture report कर रहे हैं. And ये कहा गया है कि according to James Best, ये भी एक जाने माने शख्स है जिनके बारे में कहा गया है कि inquiries about rats have tripled compared with normal levels, with his business receiving around 60 to 70 calls per week for concerned residents कि उनके area में चूहे दिखे हैं.
1: Okay. So, आप भी be careful, be on the watch. फिलहाल 25 मिनट रह गए हैं अब 10 बजने में.
2: Hollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Raw, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Trade Depot launches new products with massive deals this week only. Soundbar with Bluetooth, $99. Bar fridge, just $99. Corded steam mop, just $99. Pizza oven, just $99. Save hundreds on small appliances. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online.
4: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. All sofas, all furniture, all mattresses and all homewares. Sale on now, only at Freedom.
5: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tamaki Tūtaki, Altogether Auckland.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है. हाँ,
9: अच्छा
8: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
14: What's going on?
15: पौने 10 बज रहे हैं. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा जारी है. आज 8 तारीख जून है. आज से लेकर 14th ऑफ जून तक न्यूजीलैंड में मार्क किया जाता है नेशनल ब्लड डोनर वीक. बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपके लिए यह मुमकिन है कि आप रक्तदान करें. यू डोनेट ब्लड और प्लाज्मा. आप खुद कर सकते हैं या फिर एज अ ग्रुप विद फैमिली, फ्रेंड्स या वर्कमेट्स, जो भी आप चाहें. यह बहुत ही ज़रूरी है. nzblood.co.nz आप विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए.
16: और इसके अलावा आपको ये भी हम याद दिला दें कि आज यानी कि 8th ऑफ जून को मार्क्स 50 इयर्स सिंस न्यूजीलैंड में मैकडॉनल्ड्स का पहला जो शॉप है या स्टोर है या रेस्टोरेंट है रादा, ये ओपन हुआ था. इट ओपन इट्स डोर्स इन न्यूजीलैंड एंड मोर देन 100 पीपल जो है ये क्यू हुए थे आउटसाइड द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन पोरीरुआ बिफोर इट ओपन इन 1976.
15: और ओवर द वीकेंड टाइम्स के एक शख्स हैं जिन्होंने पावरबॉल फर्स्ट डिवीजन में $4.5 million जीते. सेवन प्लेयर्स $135,815. लोटो सेकंड डिवीजन में और एक और प्लेयर थे जिन्होंने जो पावरबॉल सेकंड डिवीजन भी जीता जिसकी वजह से उनका टोटल $50,585 जो है कि हो गया.
16: Now this next story, जिसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा पेशेंस और थोड़ा टाइम अगर दे सके, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली कंसर्निंग और इस पर काफ़ी बातचीत जो है ये भी हो रही है. थाउजेंड्स ऑफ होमलेस मदर्स एंड चिल्ड्रन जो है इनके बारे में कहा गया है, दे फॉलिंग थ्रू द क्रैक्स. एडवोकेसी ग्रुप्स जो है ये इसके बारे में काफी बातें कर रहे हैं. एडवोकेट्स का कहना है कि वो गवर्नमेंट से अर्जेंट एक्शन की मांग कर रहे हैं ताकि वो होमलेसनेस अमंगस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ये एड्रेस कर सके, क्योंकि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यंग न्यूजीलैंडर्स जो है वो फिलहाल विदाउट स्टेबल हाउसिंग और लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हुए बड़े हो रहे हैं न्यूजीलैंड के सड़कों पर. रिसर्च ये बात बताती है कि कॉलिजन टू एंड वुमेन्स होमलेसनेस शोज दैट वुमेन मेक अप अबाउट हाफ ऑफ न्यूजीलैंड्स होमलेस पॉपुलेशन, जो कि अराउंड 57,000 लोगों का है एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस. मेनी आर मदर्स स्टिल केयरिंग फॉर चिल्ड्रन. एक डिटेल्ड एनालिसिस में ये बात सामने आई है सेंसस डाटा में कि अराउंड 33 चिल्ड्रन वर लिविंग इन सीवियर हाउसिंग डिप्रिवेशन, जिसमें टेम्पररी अकोमोडेशन, ओवर क्राउडेड होम्स, कार्स और साथ में अदर अनस्टेबल लिविंग सिचुएशंस जो है ये शामिल है.
15: तो आपके लिए अनेक स्टोरीज जो है ये हम लेकर आते रहते हैं. फिलहाल अब वक्त हुआ

0: पहली बात कहते हैं कि इंसान जब समझदार होता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ता है.
1: वेरी नाइस.
0: और दूसरी बात गौर करें इस पर कि कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं.
1: और कभी कभी अगर ये तकलीफें आपको मिल रही हैं तो इस बात का एहसास आप करें कि वो कौन है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ में ज़रूरी है, और वो कौन है जिसके जाने से आपको ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको उनकी पहचान हो चुकी है. That way, it'll be easy for you to make choices कि आप अपना समय किसके नाम करना चाहेंगे. चले इन बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की. और बाय द वे जिस स्टोरी के बारे में हम बातें कर रहे थे, दो लोगों ने हमारे पास मैसेजेस भेजे हैं कि वो किस स्टोरी के बारे में हम मेंशन कर रहे थे, चूहा वाला और जुबासरी वाला, उसको लेकर. सो थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. टेक केयर, विल सी यू टुमारो ठीक सुबह 6 पर ब्रेकफास्ट शो लेकर.

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप तो
2: आए आए बताओगे।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड के बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
0: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस, टीज एंड सीज अप्लाई।
5: टर्न ग्रोसरीज इनटू गेटअवेज, पिट स्टॉप्स इनटू पॉइंट्स एंड एवरीडे स्पेंडिंग इनटू सेविंग्स। Collect more rewards points with everyday rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
6: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5k savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
7: This is an announcement from Civil Defence. Between 6 and 7 p.m. on June the 14th, we're testing the emergency mobile alert. Therefore, we advise against partaking in hide-and-seek and other hiding-centric activities. For more, here's Barry Kane from Hidden Arts New Zealand. Barry, where did Barry go? Anyway, on June the 14th, between 6 and 7 p.m., listen out for the emergency mobile alert. Oh, Barry, you were behind that curtain. Very devious.
8: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
9: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Bridget Hasty with the latest at 10. Labour has revealed its party list for the election. New names include School Strike for Climate leader Sophie Hanford and Waitangi Tribunal member Kingi Kiriona. There's also Chris Flatt, who has been National Secretary of the Dairy Workers Union since 2012. Barbara Edmonds will be celebrating a jump in rank, moving from 18th into 3rd. A barrage of missiles have been fired at Israel by Iran, with the IDF calling it a grave mistake. Iran claims it was in response to attacks against Lebanon and says it should serve as a warning. The Revolutionary Guard says it also marks the beginning of a full week of continuous strikes. Bowel Cancer New Zealand is worried about recent survey results showing a quarter of Kiwis can't name a single symptom. Chief Executive Peter Huskinson says some are less obvious than others.
11: Changing your toilet habits, you might be tired and you can't really put it down to a particular reason. And the third would be you've maybe losing some weight and you're not particularly trying to and you can't really put a cause to it.
10: Diversions are in place in Canterbury's Hiranui district after a two-car crash. It happened on State Highway 1 at Spotswood near Gore Bay. Police say they believe there have been serious injuries. To sport, New Zealand rugby boss Steve Lancaster's detailed how he finally secured the services of Tony Brown. The current Springboks attack coach will join the All Blacks as an assistant from 2028 on a two-year deal.
12: He was considering what's next after the World Cup. The stars aligned and we were able to reach agreement.
10: And after three seasons in charge, Tomasi Thama is stepping down as coach of the All Black Sevens.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
13: The highs of 18, overnight temperature of 13. आज का forecast रहने वाला है, आसमान पे बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश पड़ सकती है दोपहर के समय, मौसम ओके होगा. It feels like 16 degrees right now. 5:12 पर sunset बताया जा रहा है.
9: Non-stop Bollywood.
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
9: हम playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
13: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. मंडे ब्लूज हटाओ और काम पर आ जाओ. बस यही एक फंडा है जो हमें मंडे के दिन याद आता है. वैसे एक बात तो मैं आपको बताना ही चाहती हूँ, एंड दिस इज अबाउट वीकेंड. कैसा गया? हाँ भाई हाँ, मेरा तो बहुत ही अच्छा गया. वेरी वेरी फुल ऑन एंड कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑफ फ्रेंड्स, हाउस वार्मिंग, या थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम एंड थोड़ा कम्युनिटी ड्रिवन टाइम वो भी होता है. लेकिन आप लोगों ने अपना टाइम कैसे निकाला? वैसे मैंने अपने वीकेंड्स की शाम को बहुत ज़्यादा मेलो रख के प्यार से गुजारा अपनों के साथ. चलो ये तो मैंने आपके साथ अपना तो शेयर कर दिया कि मैंने क्या किया, आपने क्या किया. चलो ये बता दो, क्योंकि अगर आपने अपने लिए इस पूरे के पूरे फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट और संडे के दिन कुछ अपने लिए टाइम नहीं निकाला तो कुछ नहीं करवा. बंधु, ये जो आपका एक समय है ना, अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बस इस समय को मूल्यवान बनाने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए मैं काशिका स्टूडियोज़ में हाज़िर हो चुकी हूँ. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में 104.2 FM से सुन रहे हैं, रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं. तो माई टाइम लेकर मैं काशिका हाज़िर हूँ और कशिश फूड्स को बिग थैंक यू जिनके सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे. आज क्योंकि मंडे है तो मंडे के दिन भाई इमिग्रेशन में भी बहुत कुछ हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है, कोई सवाल है? क्योंकि मेरे एक्सपर्ट लीगल एसोसिएट्स के राज प्रदीप सिंह जी थोड़ी देर बाद टेलीफोन लाइन पर आने वाले हैं, तो इनसे बातचीत हम करने वाले हैं. लेकिन अभी के लिए चलिए ये गाना बजाती हूँ और आपको याद दिलाती हूँ, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी होस्ट हूँ, है कि नहीं? तो मेरा फर्ज बनता है ना आपको बताने के लिए कि आप अपने लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी नोट पर बजाओ क्या,
9: बजाओ क्या.

0: Buds Adda.
1: सो नमस्कार वंस अगेन एंड मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर आ रहे हैं नन अदर देन लीगल एसोसिएट्स के राज प्रदीप सिंह जी, जो कि हमारे साथ हर हफ्ते आ जाते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बात करने के लिए. एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू एक्चुअली पिक माय कॉल. एंड राजी, हेलो राजी, आई टेलीफोन लाइन पर एंड आई होप दैट आई एम एबल टू गेट थ्रू टू राजी फॉर this I will just call again and see if I can get Raji online. To Raji se sawal jo hamara hai aaj ka hai, what are the requirements for partner visa and culturally arranged marriage? To agar Raji telephone line par aa jayenge to we will take the call and just go by this. And uske sath sath office shout out ke liye aap taiyar, by the time when he is coming on air हमारे साथ ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप तैयार हो जाएं. सो 5599 पे आप ज़रूर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. एंड यस, राज जी इज़ वेरी मच हियर ऑन लाइन विद मी. राज जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी.
1: सर जी, ये एक प्लीज़ बताएं आप, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट फॉर पार्टनर वीज़ा एंड कल्चरली अरेंज्ड मैरिजेस?
2: Oh, yeah, that's right. I mean, these are two separate things.
1: जी.
2: One is culturally arranged marriage, Kashika ji. और ये काफी है. नहीं, हम पिछले maybe 10-15 सालों से ये वीजा कैटेगरी कर रहे हैं. इसके अंदर क्या होता है इंडिया में, जैसे कॉमन है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अरेंज्ड मैरिजेस, तो इसी को इन्होंने कल्चरली यू नो मैरिजेस का नेम दिया हुआ. इसमें एक सेपरेट वीजा कैटेगरी, इट मींस जो घर के बड़े होते हैं मदर फादर या यू नो दादा दादी, और वो बिचौलियों के हिसाब से मैच मेकर के हिसाब से जो शादियां होती हैं उनको ये अरेंज्ड मैरिज मींस जो हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करते हैं उनकी एक सेपरेट कैटेगरी है. तो चाहे वो इंडिया में शादी हो उसके बेस पे वो पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीजा पे न्यूजीलैंड आए, या फिर न्यूजीलैंड में शादी होनी है. जैसे यहाँ पे हमारी फैमिली अब काफी हैं जो 20-30-40-50 साल से रह रहे हैं और उनकी पूरी फैमिलीज यहाँ हैं. वो सिर्फ चाहते हैं कि दूल्हा या दुल्हन अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड में आए और न्यूजीलैंड में ही शादी हो. तो उस तरह के ये वीजाज होते हैं. दिस इज कल्चरली अरेंज मैरिज के अंदर इनको पार्टनरशिप विजिटर वीजा मिलता है 1-3 महीने का कि न्यूजीलैंड में आए और शादी करें. इंडिया में भी शादी करके वो लोग अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं. तो एक तो है कल्चरल अरेंजमेंट, दूसरा आपका था पार्टनरशिप वीजा. तो पार्टनरशिप वीजा में भी यही होता है कि अगर आपकी जैसे शादी हुई है रजिस्टर्ड मैरिज है उसके बेस पे आप इंडिया से पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं. और सेम उसमें भी यही है कि अगर न्यूजीलैंड में आपने शादी करनी है देन यू कैन गेट मैरिड इन न्यूजीलैंड एज वेल. तो ये दो तरह के हैं. और अगर आप न्यूजीलैंड में हो, अगेन न्यूजीलैंड में सिर्फ पार्टनर के बेस पे मैं कर रहा हूँ कि ये होता है, फिर हम न्यूजीलैंड में बात करते हैं डिफेक्टो रिलेशनशिप या रिलेशनशिप के बेस पे लगाते हैं. उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है विदाउट मैरिज के लिविंग टुगेदर फॉर 6 months, उसके बेस पे फिर आप यहाँ पे वर्क वीजा न्यूजीलैंड में आप अप्लाई कर सकते हो. वैसे सुनने में देखने में ये बड़ा इजी लगता है कि शायद पार्टनरशिप वाले वीजा सबसे इजी होते हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन के साथ है कि इसके अंदर भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी चैलेंजिंग होते हैं, स्पेशली फॉर लिविंग टुगेदर वाले. जैसे इंडिया में लोग शादी करते हैं उसके बाद 1-1.5 महीना साथ रहते हैं और वो वर्क वीजा अप्लाई करते हैं, जो कि फिर एक पार्टनर फिर न्यूजीलैंड आ जाता है, बाद में कंसर्न आके वो डिक्लाइन हो जाते हैं. तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, इसके लिए वो लोग हमारे साथ ये सब डिस्कस कर सकते हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भी आप अपना केस खराब ना करें, चाहे आप कल्चरली मैरिज कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं उसके बेस पे अपने पार्टनर को लेके आना चाहते हैं, या न्यूजीलैंड में डिफेक्टो रिलेशनशिप में एंड यू वांट टू सपोर्ट योर पार्टनर. तो हम इन सब में और प्लस इसके बेस पे रेजिडेंस भी होता है, सो वी कैन एडवाइज ऑल द वीजा कैटेगरी इन ऑल द सर्कमस्टांसेस. कोई भी आपकी सिचुएशन हो तो आई थिंक यू कैन मेक अपॉइंटमेंट विद अस एंड देन वी कैन डिस्कस योर केस
1: एब्सोल्युटली
2: ऑन 1-by-1 बेसिस.
1: एब्सोल्युटली. सो भाई द मैजिक नंबर टू गिव अ कॉल इज 0927994399 हैमिल्टन वालों 0225600 0736 पर एंड लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट एनजेड की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जहां पे आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और इनके साथ आगे फर्दर बातें भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच राज जी फॉर टुडे, एंड अगले हफ्ते आपसे फिर बातचीत होगी.
2: थैंक यू कशिका,
1: थैंक यू सर, बाय बाय. कमिंग अप नेक्स्ट इज दी ऑफिस शाउट आउट. तो भाई आप किस ऑफिस से सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं बताइए मुझे 5599 पे.
0: माय टाइम विद कशिका.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं.
4: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप डॉट एनजेड और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
6: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. ईट बेटर लिव बेटर नाउ विद कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नेशन वाइड. www.kashishfoods.co.nz.
7: Roadside drug testing is here. New Zealand Police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-20 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: Beating pump prices is easier than ever for seniors, students, kids, community service card holders and others. Auckland Transport has 7 different discounts to make getting around more affordable. See if you can save on travel by searching AT Fare Discounts.
11: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
12: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
11: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
13: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
14: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Office shout out.
1: ऑफिस शाउट आउट में भाई आज अश्विन आपने मुझे गुड मॉर्निंग बोला है एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू सो मच. तो भाई ये प्यारा सा ऑफिस शाउट आउट तो मेरे पास आ ही चुका है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास आ चुका है एक आइडिया, जहां FIH हॉकी वुमेंस नेशंस कप जो है ये आ रहा है नॉर्थ हार्बर में. ये 15 जून से शुरू होने वाला है 21 जून तक, और हम जो है आपके लिए प्राउडली लेकर आ रहे हैं स्टिक विद हम. या एक चांस है आपका, जहां पर आप यू नो ये ब्लैक स्टिक्स जो वुमेन है ये देखेंगे कि क्या ये डिफेंड कर पाएंगी अपना टाइटल या नहीं. 8 कंट्रीज और वर्ल्ड क्लास हॉकी, या आप देख सकते हैं इट्स द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट जो हम न्यूजीलैंड में देखने वाले हैं. अगर आप यहाँ होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, हॉकी लिखना है 5599 पे और अपना पूरा नाम लिख के हम तक पहुँचा देना है. दैट्स अबाउट इट. चलो हम वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार होंगे. वैसे अगर आप टिकट्स खरीदना चाहते हैं, hockeynz.flicket.co.nz के जरिए खरीद भी सकते हैं. तो स्टिक विद हम एंड बी अ पार्ट ऑफ द एक्शन. लेट्स वेट फॉर योर टेक्स्ट टू कम इन.
14: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
2: Are you ready? Chatbusters.
3: थोड़ा तो हॉल बना दे.
4: वैसे हॉकी के कितने फैंस हैं मुझे पता है, एंड आई कैन सी संपत एंड गौरव वर्मा, मैंने आपका नाम ऐड कर दिया है एंड द ड्रॉ, आई होप यू विन.

0: Better.
1: Eat better, live better, and साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ that Chris Hipkins जो हैं लेबर पार्टी के चीफ, इन्होंने बताया that एक लिस्ट जो है इन्होंने कम्युनिटीज, रीजन एंड कल्चर अक्रॉस न्यूजीलैंड ये रिलीज़ की है, और ये टीम जो है दे पुटिंग थिंग्स फॉरवर्ड, क्या इंश्योर करना चाहते कि न्यूजीलैंड के लिए क्या आगे मीन करता है. सो दैट लिस्ट हैज़ बीन टेकन आउट. बट अभी के लिए मुझे बताओ आप के आपके हिसाब से आपके ड्रीम में कुछ खास आया है. 0800 00 हम पर आप मुझे कॉल कीजिए और बातचीत करिए, बताइए क्या ड्रीम है आपका, या टेक्स्ट भी कर सकते हैं. आई थिंक आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ टेक्स्ट. आई थिंक दे वर वेटिंग के कब मैं पूछूं और कब. आप वैसे कभी वेट मत क्या करो, काशिका लिख के आप बोलो काशिका ये क्या करना है. ठीक है, अच्छा चलो, आई विल टॉक अबाउट योर ड्रीम, गिव मी जस्ट दिस एड ब्लॉक.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: इफ यू हैव गॉट एन इंजरी लाइक अ स्प्रेन और स्ट्रेन, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
2: Auckland, tayyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan, Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
3: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri-style chicken sub or a Korean-style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway. Good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
4: Beating pump prices is easy with 40% off bus, train and ferry fares for tertiary students.
5: Thanks, driver.
4: With free off-peak travel for seniors who have hot gold cards.
6: Thank you, driver.
4: 40% off and free weekend travel for kids under 16.
5: Thank you, driver.
4: And 50% off for community service card holders.
7: Thanks, driver.
4: Auckland Transport has 7 different fare discounts to make getting around even more affordable. See if you can save by searching AT Fair Discounts.
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
9: Dream Diary में मेरे पास आपका जी, I know it's a little weird dream and that's what you have written. तो मैंने सोचा हाँ आज मैं इसके बारे में बात करती हूँ. तो इन्होंने बताया कि आपका सपना आया कि कोई आपके कान खींच रहा है. Probably this could be a you know graphic symbol, मैं कह सकती हूँ कि आपको लग रहा है कोई कान खींच रहा है, बट एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज है इसके अंदर. और ये पॉजिटिव सा मैसेज ये होगा कि अगर इसका एसेंस हम ढूँढें तो कह सकते हैं कि यू नो there's समथिंग विच इज़ एक्चुअली इफेक्टिंग यू मेंटली. अनफॉर्चुनेटली आप अपनी लाइफ का परसेप्शन को अगर बदलने में भी कामयाब नहीं है तो पुल योर ईयर भाई, अभी भी बदल लो, कुछ भी हो सकता है. ये किसी चीज़ के साथ भी हो सकता है, यानी नेगेटिव काइंड ऑफ अ थॉट, प्रॉबेबली सम प्रेजडिस, कोई इग्नोरेंस वगैरह हो, तो आपको हो सकता है ये सपना आ रहा हो. बाय द वे एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, दैट डिड यू नो कि बुद्धा जी को हमेशा डिपिक्ट किया जाता है जब उनके ईयर्स बड़े यू नो बड़े बड़े ईयर्स दिखाए जाते हैं. इट्स नॉट बिकॉज दैट ही हैड सम काइंड ऑफ अ डिफॉर्मिटी, बट इट वॉज रिफ्लेक्टिंग हिज विजडम एंड कंपैशन. और इसीलिए ही कुड हेयर वो सारे साउंड्स जो थे दुनिया के, सुन पाते थे, एब्जॉर्ब कर पाते थे, जो क्रीचर्स रो रहे होते थे या जो लोग दुख में होते थे उनको सुन पाते थे, एंड ही कुड रिस्पॉन्ड टू इट. एक्चुअली अगर देखा जाए तो ईयर्स जो हैं हमें एक हेल्थियर एग्जिस्टेंस के बारे में ज़रूर बताते हैं. मे बी ये कह सकते हैं दैट यू आर ट्राइंग टू हेयर योर इनर वॉइस, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं. तो मेक श्योर आपका यू नो जो आपने कहा कि कान आपके पुल करने की आपको वो हो रही है, तो प्लीज़ प्रॉबेबली आप नोट करें, एक सेंसरी ऑर्गन है आपके बॉडी का एंड ये आपके माइंड बॉडी एंड सोल को कनेक्ट भी करता है. तो एक वाइटैलिटी, एक एनर्जी, एक नेगेटिव एब्जॉर्प्शन आपके लाइफ में अगर चल रहा है तो कोशिश करिए ईयर को पुल कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ कुछ कभी ऐसे होती हैं जो नेगेटिव माइंड में आपके रहते हैं तो पॉसिबली कुछ ना कुछ अलग किस्म की चीज़ें होती, लगता रहा भाई सीधे हो जाओ, जब कुछ गलती करते हैं ना तो कान पकड़ने लग जाते हैं. ठीक उसी तरह से आप भी बात कर सकते हैं. वैसे मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ. लेजेंडरी राहत फ़तेह अली खान आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट लेकर, एंड दिस इज़ नेक्स्ट मंथ. आप एक डबल पास अगर जीतना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊँगी कि एक क्या आप खास कर सकते हैं. तो थोड़ी देर बाद ध्यान रखिएगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि कैसे आप ये पास जीत सकते हैं.

0: 0800 00 हम पर कॉल कीजिए, क्योंकि मैं आपकी एंट्री लेने वाली हूँ। कोई भी ऐसा गाना है जो आपको लगता है राहत फतेह अली खान का है, जो आपकी करंट लाइफ सिचुएशन से मैच करता है, या फिर आप किसी स्पेशल को वो गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बड़ा एक हार्टफेल्ट सा क्रिएटिव डेडिकेशन जो है आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा। 0800 00 हम पर फटाफट कॉल कीजिए, मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करना चाहती हूँ। राहत फतेह अली खान 25 जुलाई के दिन ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म करने आने वाले हैं। जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोटला लाइव, ड्रीम एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं सुनहरा मौका जीतने के लिए एक डबल पास। वैसे drytickets.com के जरिए भी आप ये टिकट्स जीत सकते हैं। सो 0800 00 हम पर कॉल करो अभी। कोई ऐसा गाना जिसको आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं, एंड ये जो कॉल होगी चली जाएगी ड्रॉ में। 0800 00 48 66 पर कॉल करना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी गाना आपको लगता है जो राहत फतेह अली खान साहब के साथ के गाने के साथ आपकी करंट लाइफ में यू नो इट मेक्स अ डिफरेंस, या कभी किसी को आप मेक्स यू फील समवन स्पेशल, या कोई क्रिएटिव डेडिकेशन भी हो सकती है। सो आई वुड लाइक टू टेक वन कॉल एटलीस्ट जो आप में से कोई करे और मुझे बताए कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग है जो मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चलिए कॉल लेते हैं पहली हम। कोई बात नहीं, 0800 00 हम इज़ द नंबर जिस पर कॉल कर सकते हैं भाई। उसके बाद फिर ये चांस आपका चला जाएगा, फिर ये चांस मेरे साथ आपके लिए कल आएगा। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने कॉल किया उनकी कॉल आगे मटेरियलाइज नहीं हुई, बट अभी के लिए अच्छा ये कॉल आ गई है, चलिए कॉल ले लेते हैं हम। गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
1: गुड मॉर्निंग, गौरव दिस साइड।
0: हाय गौरव, बताइए गाना।
1: राहत फतेह अली खान सर का गाना तुम जो आए।
0: अच्छा, कैसे रिलेट करते हो?
1: अब मेरी वाइफ के बाद जो भी चीजें नहीं हुआ अच्छी हुई है।
0: ओके ओके, इंटरेस्टिंग।
1: ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या गरीबों की जिंदगी जी रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अमीर का फीलिंग आया बिना दहेज के।
0: तुम जो आए, ऑल राइट। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शायद अगले घंटे पर ये गाना बजा दूं, बट थैंक यू सो मच एंड आई हैव पुट योर नेम इनटू द ड्रॉ नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट,
1: थैंक यू सो मच।
0: बाय। देखो भाई कितना आसान था इनका नाम जाना ड्रॉ में, और अभी के लिए जो गाना मैं बजाने वाली हूँ, शिल्पा शेट्टी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 5599 पे जरूर टेक्स्ट कीजिए।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप।

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: Is finding the sun and not moving all day long. Animates, we make happy happen.

0: बैठे क्योंकि आ रही है
1: माय टाइम विद काशिका।
2: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, लेकिन ये कभी कभी टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है ना उसमें हम अटक जाते हैं, है कि नहीं? हम कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे अधीन हो जाते हैं। सो बिग सॉरी फॉर द स्मॉल गैप, आई कैन से दैट। लेकिन हाँ, माय टाइम लेकर मैं काशिका आ जाती हूँ, 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहता है। थैंक यू सो मच। पिछले घंटे पर आपने इतना इन्जॉय किया, इस घंटे पे रिसाइकल में, रीयूज में एंड सिक्स वर्ड स्टोरी। कहाँ भाई, कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बता दीजिए। वैसे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में आपको बता देते हैं, हमारे म्यूजिक स्टेशंस को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो हम रिवाइंड जो है, नंबर 1 रोवा का म्यूजिक स्टेशन है, नंबर 2 इज नन अदर देन 80s के जूक बॉक्स। भाई आपको एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट बतानी ही भूल गई, और ये है कि अगर हमारे ड्राइव शो में आप सैंडे और रुस्बे को सुनते हैं तो इनकी तो बातें ही अतरंगी होती हैं। इन अतरंगी बातों के साथ साथ ये जो हैं आपके लिए अनफिल्टर्ड भी कुछ कॉन्वर्सेशन लेकर आते हैं जो ऑफ द एयर होता है। एंड ऐसे में एक कॉन्वर्सेशन इनका ऐसा गया, चैंकी सिंह के साथ 7 फुट टॉल रेसलर, वो अगर आप सुनना चाहते हैं इनके पूरी कहानियाँ, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ड्राइव लिख के भेजें। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी रिमाइंड यू, आपको पता है इनका हैट्रिक हुआ है? Yes, थर्ड टाइम इन्होंने कंसेक्यूटिवली रेडियो अवार्ड जीते हैं फॉर अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट जो इन्होंने किए हैं फॉर एशियन पॉडकास्ट। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू सैंडी एंड रुस्बे। इनके जो भी आप ये बातें सुनना चाहते हैं आप ड्राइव लिख के भेजें 5599 पर।
1: बचाओ क्या?

0: eat better, live better.
1: I can say that Kangana Ranaut जो है ना एक अपना बड़ा सारी moment जो है वो लेकर आ चुकी हैं इनके एक special look जो है distinctively इनको बहुत ज़्यादा elegant look दे रहे हैं now इनकी latest appearance एक perfect example है जहाँ पे sequin, shimmer, साड़ीज़ वगैरह के बजाय इन्होंने क्या क्या good classic prints पुराने ज़माने के जैसे होते थे ना उन्हें वापस लेकर आई थी ivory draped एक साड़ी थी जिसमें black polka dots थे और कुछ floral motifs उसके अंदर थे मुझे मेरी मम्मी की साड़ी याद आने लगी उसके बाद जब मैं इनकी फोटो अभी देख रही हूँ वैसे अगर देखा जाए पोल्का डॉट्स जो है एक विंटेज की फीलिंग ज़रूर देते ही हैं मगर वो ब्राइट फील जो कलर्स जो लेकर आते हैं वो फ्लावर्स लेकर आते हैं साड़ी में जो एक चेयरफुल रिफ्रेशिंग लुक दे देते हैं सो किस तरह से ये एक पुराने एरा को कोई वापस लेकर आ सकता है इस तरह की चीज़ों के साथ साथ वेल जब मैं इनके लुक को देख रही थी तो मैंने डेफिनेटली देखा कि इनका स्लीवलेस ब्लाउज उसी प्रिंट का ही था और कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी उसके अंदर कोई हैवी चीज़ें नहीं उन्होंने पहनी हुई थी एक्सपेरिमेंटल एक वी नेक का उन्होंने ब्रॉड स्ट्रैप्स के साथ ब्लाउज पहना हुआ था और साड़ी ने ऑफकोर्स सेंटर स्टेज ले लिया था बट टू थिंक अबाउट इट क्या ये साड़ी कहाँ से क्या हुई थी तो जो रूमर चल रहा है या जो बात जो न्यूज़ में आई है वो है ये साड़ी सिर्फ 15,000 रुपये की थी 15,000 इंडियन रुपीस ऑनेस्टली ये जो कॉस्ट होगा मोस्टली जब बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह कुछ पहनते लाखों में जाता है कुछ भी होता है बट ना इनका लुक बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट जहाँ पे इन्होंने अपने मेकअप की फिलॉसफी में भी विंग्ड लाइनर का इस्तेमाल किया और न्यूड लिपस्टिक शेड इस्तेमाल किया देन पर्ल चोकर अराउंड हर नेक एंड एक छोटा सा पेंडेंट उसमें नेकलेस में लगा एंड मैचिंग पर्ल स्टड्स का इन्होंने इस्तेमाल किया ये कितनी एलिगेंटली तैयार हुई और बस जस्ट फॉर $15,000 इंडियन रुपीज में एक साड़ी उनको मिल गई और जो उन्होंने इसको कितनी ब्यूटिफुली अपलिफ्ट किया सिक्स वर्ड स्टोरी भाई कोई है कोई रेडी तो बताओ
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
9: Grey South Road, greater than ever.
10: South Auckland's buses just became a lot better.
9: MIT, A-OK.
10: With better bus routes, more frequent buses, and more.
9: Airport, got your transport.
10: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
11: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, fly Mangalore. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
12: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
13: So, मेरे पास six-word story, भाई क्या टाइमिंग है आपका? 2811. School's fine, but home is divine. Oh, absolutely. School's fine, but home is divine. Isn't it true? मतलब घर तो कितना खूबसूरत होता है, घर एक मंदिर होता है ना हमारा सबका. ओह वाओ, दिस वाज ब्यूटीफुल, आई टोटली लव्ड इट. वैसे कम्युनिटी में क्या खास हो रहा है, चलिए आप हमें बता सकते हैं. 5599 पे टेक्स्ट नहीं कीजिए, buzz@hamfm.com पे हमें आप ईमेल कर सकते हैं अगर कोई फ्री इवेंट है. और 5 से 11 जून आपके लिए शाम को ऑकलैंड में 4 बजे से 7:30 बजे तक बहुत ही खूबसूरत भाई श्री राम भाई रमेश भाई ओझा जो हैं आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा लेकर आ रहे हैं. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ जो है 13 जून को लेकर आ रहे हैं एट रामकृष्ण मंदिर ऑनस्लो एवेन्यू मैनकाओ. तो डेफिनेटली आप यहां पर पहुंच सकते हैं. और बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है, सहज योगा ग्लोबल मेडिटेशन जो एक फ्री मेडिटेशन की क्लासेस हैं, ये मरेज बीच माउंट एल्बर्ट नॉर्थ कोर्ट में हो रही हैं. तो आप डेफिनेटली चाहें तो डिफरेंट नंबर्स हैं जिन पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सहज योगा ग्लोबल मेडिटेशन अगर आप इनके पेज पे चले जाएंगे तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी. ब्राह्मण समाज जो है अधिक मास जो है ये इनका बहुत ही खूबसूरती के साथ हुआ कल के दिन. लेकिन अगर आपका भी कोई buzz@hamfm.com पे कोई कम्युनिटी इवेंट है, ज़रूर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं. चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं.
12: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Jessica.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: न्यूजीलैंड के बारे में हमें एक ही बात पता है कि हेवी स्वेल्स जो हैं इसकी वार्निंग्स इशू हो चुके हैं वेलिंगटन और वायरारापा कोस्ट में, जहां पर डेंजरस कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू पीक ऑन ट्यूसडे. सो वेलिंगटोनियंस आपको बता देते हैं, कोस्ट लाइन फ्रॉम केप तेरावीहिटी से तुराकाराई जो है ये कम्बाइन किए जा रहे हैं, जहाँ पर वेव्स जो हैं 7 से 8 मीटर मिड डे ट्यूसडे के दिन से बढ़ती चली जाने वाली हैं, और इसके साथ साथ 9 to 10 meters लेट ट्यूसडे मॉर्निंग. मेट सर्विसेज ने बताया ये जो वेव्स हैं ईस्ट शोर पे काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं, एंड ये ओहाकोनी एरिया में भी हो सकते हैं. हैज़र्डस कंडीशंस जो हैं ऑफशोर व्हीकल्स के लिए भी बताई जा रही हैं. तो प्लीज़ इंश्योर, ये एक मरीन फॉरकास्ट जो आई है, रैपिड राइजिंग स्वेल्स जो हैं ये काफ़ी बढ़ती चली जाएंगी. सो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ऑफशोर बहुत बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो जितने भी वेलिंगटोनियंस हैं बहुत ध्यान से आप अपने एरियाज़ को संभाल लीजिएगा. काइकोरा कोस्ट एक्सेट्रा में भी कहा जा रहा है ये कंडीशंस बढ़ सकती हैं.
4: 80s के रेट्रो गाने

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: हो गई इंतजार की।
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
5: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
6: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
7: Showerdome.co.nz.
8: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
8: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
10: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
11: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

रेस्क्यू मी रिसाइकल में मैं एक ही चीज़ के बारे में बात करती हूँ। हम लोग घर में रोटियाँ बना लेते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाती हैं ये रोटियाँ, और फिर आप क्या करें, आप कोशिश यही करते हैं कि आप अपने लेफ़्ट ओवर रोटीज़ को या जो भी लेफ़्ट ओवर आइटम होते हैं उनको कैसे आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं विद द मिनिमम एफर्ट। अब मिनिमम एफर्ट की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रोटी आपकी बच जाती है तो भाई अगले दिन आपने रोटी सब्जी खा ली, आप डन डेफिनेटली। लेकिन रोटी की फ्रेंकी ये मेरा फेवरेट है, या रोटी का रैप हम ज़रूर बना सकते हैं, उसमें कोई शेज़वान चटनी लगाने के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें कोई, या चटनी हो या शेज़वान सॉस लगा दी, और जो कोई लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बड़ी है या अंडे की भुर्जी बना ली या फिर पनीर भुर्जी आपने बना ली, इसको लेके आपने लेके टोस्ट कर दिया साइड से और इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन कर दिया, दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सैलड डालिए, थोड़ी चीज़ें डालें, एंड यू विल रियलाइज़ कि एकदम बढ़िया से बढ़िया आपके लिए एक तैयार हो गई है चीज़ लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ। तो मोस्टली हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन कल रोटी से रिलेटेड मेरे पास एक और रेसिपी, वैसे आपके पास कोई रेसिपी वगैरह आती है तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट एक बहुत ही खास चीज़ हो रही है, और ये खास चीज़ है जहाँ एक डबल पास आप जीत सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज पर आप पहुँच जाए एक डबल पास जीतने के लिए। इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए लेकर आ रही है बलून डॉग, ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस जो है जेकब राजन जो MNZM से है, ये पहली बार एक वर्ल्ड प्रीमियर करने वाले हैं बलून डॉग का। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन है जो रविंद्रनाथ टैगोर की फेवरेट बिलव्ड स्टोरी है काबुलीवाला पे बेस्ड। 21st सेंचुरी में किस तरह से इस कहानी को एक अलग मोड़ से प्रस्तुत किया जाने वाला है, वैसे मैं बता देती हूँ, काबुलीवाला इज़ अ स्टोरी अबाउट एक 5 साल की लड़की और साथ साथ एक माइग्रेंट जो अकेला था उसके बारे में, और किस तरह से कुछ ट्रुथ्स जो हैं वो निकल कर आते हैं उस काबुलीवाला के साथ साथ। तो ये भाई मास्टरपीस जो है, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हल्का सा ओरिजिनल गाने, ओरिजिनल म्यूज़िक, डांस, एक थिएट्रिकल मैजिक मैजिक अगर आप देखना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल हैपनिंग राइट नाउ एट द क्यू थिएटर इन ऑकलैंड। ये 20 जून तक होने वाला है, ये अनफॉरगेटेबल थिएटर एक्सपीरियंस मिस मत कीजिएगा। iticket.co.nz के जरिए आप फटाफट जाके टिकट खरीद सकते हैं, और फेसबुक के पेज पे चले जाएं अगर आप ये टिकट जीतना चाहते हैं।

तो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार। आने वाला हफ्ता आपके लिए और भी दमदार, जोरदार और शानदार बना रहे, बस यही मेरी मनोकामना है। तो चलो भाई, इसी के साथ मैं अभी यहाँ से चलती हूँ। कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, एंड जितने लोग आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू नन अदर देन पल्लवी तेंदुलकर, आपका जन्मदिन है। साथ साथ देवांग, आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं विद नन अदर देन द गॉर्जियस डिम्पल कपाड़िया एज वेल एज शिल्पा शेट्टी एज वेल। सो दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, बाय।

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: तू मेरा भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है उसके पास सारा संसार है.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है मैसेज का?
3: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
5: Mary didn't think she needed a DVS system.
6: I've got a heat pump.
5: That should do. But it didn't do it, did it, Mary?
6: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
5: So Mary got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
9: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
11: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
12: फ्री कंटेनर तो